अगर तुम लोग भलाई खुल्लम खुल्ला करोगे या छुपाकर या बुराई से दरगुजर करोगे तो खुदा भी मुआफ करने वाला और साहिबे कुदरत है।

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط

हाँ, जिन लोगों ने इससे पेशतर कि तुम्हारे काबू आ जाएं तौबा कर ली, तो जान रखो कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है।

0: ये झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करने वाले और रिश्वत का हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास कोई मुकदमा फैसल कराने को आए तो तुम इनमें फैसला कर देना या एराज करना, और अगर उनसे एराज करोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, और अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ का फैसला करना कि खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है।
1: वो कई

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद। कबाइल और अफराद को दावत इस्लाम। जी कदा सुना नबुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ताइफ से मक्का तशरीफ लाए और यहाँ अफराद और कबाइल को फिर से इस्लाम की दावत देनी शुरू की। चूँकि मौसम हज करीब था, इसलिए फरीजा हज की अदायगी के लिए दूर और नज़दीक हर जगह से पैदल और सवारों की आमद शुरू हो चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस मौके को गनीमत समझा और एक एक कबीले के पास जाकर इसे इस्लाम की दावत दी, जैसा कि नबूवत के चौथे साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का मामूल था। इमाम ज़हरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिन कबाइल के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और इन्हें इस्लाम की दावत देते हुए अपने आप को इन पर पेश किया, इनमें से हज़्बे ज़ैल कबीलों के नाम हमें बताए गए हैं। वाज़े रहे कि इमाम ज़हरी के जिक्र करदा इन सारे कबाइल पर एक ही साल या एक ही मौसम हज में इस्लाम पेश नहीं किया गया था, बल्कि नबूवत के चौथे साल से हिजरत से पहले के आखिरी मौसम हज तक 10 साला मुद्दत के दौरान पेश किया गया था। इब्ने इसहाक ने बाज़ कबाइल पर इस्लाम की पेशी और इनके जवाब की कैफियत का भी जिक्र किया है, जिनकी तफसील मंदरजा ज़ैल है। बनू कल्ब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस कबीले की एक शाख बनू अब्दुल्ला के पास तशरीफ ले गए, इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने आप को इन पर पेश किया। बातों बातों में ये भी फरमाया कि ए बनू अब्दुल्ला, अल्लाह ने तुम्हारे जदे आला का नाम बहुत अच्छा रखा था, लेकिन इस कबीले ने आपकी दावत कबूल ना की। बनू हनीफा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इनके डेरे पर तशरीफ ले गए, इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने आप को इन पर पेश किया, लेकिन इन जैसा बुरा जवाब अहले अरब में किसी ने भी ना दिया। आमिर बिन सासमा। इन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ दावत दी और अपने आप को इन पर पेश किया। जवाब में इनके एक आदमी ने बोला, खुदा की कसम, अगर मैं कुरैश के इस जवान को ले लूं तो इसके जरिए पूरे अरब को खा जाऊंगा। फिर इसने दरियाफ्त किया कि अच्छा ये बताइए, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से आपके इस दीन पर बैत कर लें, फिर अल्लाह आपको मुखालफीन पर गलबा अता फरमाए, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद जमाम कार हमारे हाथ में होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाम कार तो अल्लाह के हाथ में है, वो जहाँ चाहेगा रखेगा। इस पर उस शख्स ने कहा, खूब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हिफाजत में तो हमारा सीना अहले अरब के निशाने पर है, लेकिन जब अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को गलबा अता फरमाए तो जमाम कार किसी और के हाथ में हो, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दीन की जरूरत नहीं। गर्ज इन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद जब कबीला बनू आमिर अपने इलाके में वापस गया तो अपने एक बूढ़े आदमी को, जो किब्रे सनी के बायस हज में शरीक न हो सका था, सारा माजरा सुनाया और बताया कि हमारे पास कबीला कुरैश के खानदान बनू अब्दुल मुतलिब का एक जवान आया था, जिसका ख्याल था कि वो नबी है। उसने हमें दावत दी कि हम उसकी हिफाजत करें, इसका साथ दें और अपने इलाके में ले आएं। ये सुनकर उस बूढ़े ने दोनों हाथों से सर थाम लिया और बोला, ऐ बनू आमिर, क्या अब इसकी तलाफी की कोई सबील है और क्या इस अजदस रफ्ता को ढूंढा जा सकता है? उस जात की कसम जिसके हाथ में फना की जान है, किसी इस्माइल ने कभी उस नबूवत का झूठा दावा नहीं किया, यकीनन हक है। आखिर तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी? ईमान की शुआएं मक्के से बाहर। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कबाइल और वफूद पर इस्लाम पेश किया, इस तरह अफराद और अशखास को भी इस्लाम की दावत दी और बाज ने अच्छा जवाब भी दिया। फिर इस मौसम हज के कुछ ही अरसे बाद कई अफराद ने इस्लाम कबूल किया। सुवेद बिन सामत। ये शायर थे, गहरी सूझबूझ के हामिल और यसरब के बाशिंदे। इनकी पुख्तगी, शेर गोई और शर्फ व नस्ब की वजह से इनकी कौम ने कामिल का खताब दे रखा था। ये हज या उमरा के लिए मक्का तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी, कहने लगे, गालिबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास जो कुछ है वो वैसा ही है जैसा मेरे पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास क्या है? سوید نے کہا حکمت لقمان. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیش کرو. انہوں نے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے. اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے. انہوں نے سنہ نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا. سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر اختتام پذیر کریں گے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Lumia.

0: दुनिया की तवानाई की खपत पर नज़र डालते हैं तो अंदाज़ा होता है कि ये हर गुजरते दिन के साथ तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम 1990 के अदादो शुमार का मवाज़ना 2025 से करें तो दुनिया में बिजली की खपत तकरीबन दुगनी हो चुकी है। ये इजाफा सिर्फ आबादी की बढ़ोतरी की वजह से नहीं बल्कि सनअती तरक्की, टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त और रोज़मर्रा सहूलतों में इजाफे की बदौलत भी हुआ है। मुस्तकबिल की बात की जाए तो 2040 तक का अंदाज़ा है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तवानाई की ज़रूरत 2015 के मुकाबले में 2000 गुना बढ़ चुकी होगी। ये तो सिर्फ एक शोबा है जिससे ये वाज़े होता है कि तवानाई की तलब आने वाले वक्तों में कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है।
1: ऐसे ही है।
0: जहाँ तक तवानाई की पैदावार का ताल्लुक है, आज भी दुनिया में सिर्फ 9% बिजली काबिल तजदीद ज़राए से पैदा हो रही है जबकि बाकी तवानाई कोयला, तेल, गैस, न्यूक्लियर और हाइड्रो ज़राए से हासिल की जाती है। इन ज़राए का सबसे बड़ा मसला है कि ये महदूद मकदार में दस्तियाब हैं, तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और इनका इस्तेमाल माहौल पर इंतहाई मनफी असर डाल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर जहरीली गैसों के अखराज से ग्लोबल वार्मिंग, मौसम की शिद्दत में इजाफा, समंदर की सतह बुलंद होना और दीगर माहौलियाती मसाइल
1: पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, इस प्रॉब्लम को।
0: अब अगर हम तवानाई के इस्तेमाल के शोबर पर बात करें तो दुनिया में तवानाई का इस्तेमाल 5 अहम शोबों में होता है जिनमें सनत, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल सरगर्मियां, ज़राअत और रिहायशी शोबा शामिल है। रिहायशी शोबे के अलावा बाकी तमाम जगहों पर तवानाई का इस्तेमाल किसी भी वक्त के लिए मौखर नहीं किया जा सकता, उन्हें मुसलसल तवानाई दरकार होती है। जिसकी बहुत आम सी मिसाल ये है कि किसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर अब किसी पेशेंट को ऑपरेट किया जा रहा है तो उसकी जो सपोर्ट डिवाइसेस हैं उनको बंद नहीं किया जा सकता किसी
1: 24/7 वहाँ पे ज़रूरत है।
0: लेकिन रिहायशी शोबा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें तवानाई की खपत को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म किया जा सकता है और इस शोबे में तकरीबन 25% तवानाई इस्तेमाल होती है। अगर लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो बिजली की तलब में तवाज़ुन पैदा किया जा सकता है। मसलन हम ऐसी आदतें अपना सकते हैं कि गैर ज़रूरी वक्तों में भारी बरकी आलात ना चलाएं, तवानाई बचाने वाले आलात का इस्तेमाल करें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में तवानाई के ज़िया को कम करने की कोशिश करें। तवानाई के मौसर इंतज़ाम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इसकी बचत की जाए बल्कि इसका मतलब है कि तवानाई का ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जो आने वाले वक्त में पायदार हो, क्लीन एनर्जी हो और सबके लिए दस्तियाब हो। काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसे सूरज, हवा और बायोमास की तरफ जाना इसका अहम हिस्सा है। हुकूमत और इदारों को चाहिए कि सिमत में तहकीक, मनसूबाबंदी और सरमायाकारी करें और आवाम को इसके बारे में शऊर दें। ये सब सवालात हमें एक बड़ी तस्वीर की तरफ लेकर जाते हैं। क्या हम तवानाई के मौसर इस्तेमाल के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास ऐसे मंसूबे मौजूद हैं जो बढ़ती हुई तलब को पूरा कर सकें और माहौलियाती तहफ़ को भी यकीनी बनाएं? क्या हम अपने घरों, सनतों और माशरे में तवानाई का ज़िया रोकने के लिए संजीदा इकदाम कर रहे हैं? क्या हम आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज और पायदार तवानाई निज़ाम छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं? ये वो सवालात हैं जिन पर मज़ीद गौर करने और जवाब तलाश करने की ज़रूरत है क्योंकि बात सिर्फ आज की नहीं आने वाले कल की भी है।
1: बिल्कुल सर, और हमारे आने वाली नस्लों को ये हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा अगर हमने आज इसके लिए कोई मौसर इकदाम ना किया तो। अच्छा सर, स्मार्ट ग्रिड पे आप आज बात कर रहे हैं तो हमने ग्रिड का वर्ड तो बहुत दफ़ा सुना हुआ है
0: जी।
1: ये स्मार्ट ग्रिड क्या है और ये हमारे जो रवायती ग्रिड है उससे किस तरह मुख्तलिफ है?
0: एक्चुअली जी, जो करंट इस वक्त टाइम चल रहा है इसमें तवानाई की जो ज़रूरियात हैं वो तो बढ़ रही हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ जो बिजली की तरसील का निज़ाम है इसको भी जदीद और मौसर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। स्मार्ट ग्रिड इसी ज़रूरत का जवाब है। स्मार्ट ग्रिड एक जदीद डिजिटल और ख़ुदकार बिजली का निज़ाम है जो मसनूई ज़हानत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स और डेटा एनालिटिक्स की मदद से ना सिर्फ बिजली की पैदावार और तरसील को बेहतर बनाता है बल्कि तलब और रसद के दरमियान तवाज़ुन भी बरकरार रखता है। अब अगर हम रिवायती ग्रिड की बात करें तो वो एक पुराना निज़ाम है जिसमें बिजली की तरसील यकतरफा होती है, यानी बिजली पैदा करने वाले प्लांट से सारिफ तक पहुंचती है और इसमें सारिफ की तरफ से कोई मालूमात वापस नहीं जाती। अगर कहीं लाइन में ख़राबी हो जाए या फॉल्ट आ जाए तो उसे तलाश करने और दुरुस्त करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इसके बरक्स स्मार्ट ग्रिड में दो तरफ़ा कम्युनिकेशन मौजूद होती है। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ बिजली सार्फीन तक पहुंचती है बल्कि सार्फीन की जानिब से डेटा वापस भी जाता है। जिससे सिस्टम को पता चलता रहता है कि कहाँ कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है,

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, हम लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट ग्रिड्स और तवानाई के मौसर इंतजाम पे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है अपने इस टॉपिक के ऊपर, तो पाकिस्तान में बिजली की सूरत हाल आपके ख्याल में कैसी है?
2: पाकिस्तान में जी बिजली के मसाइल कई दहाइयों से जारी हैं और आज भी हमारे मुल्क की मईशत और अवामी ज़िंदगी इनसे शदीद मुतासर है। सबसे पहला मसला है लाइन लॉसेस का और बिजली चोरी का। हमारा मुल्क उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ बिजली की तरसील के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान होता है
1: जी।
2: कभी पुरानी लाइनों की वजह से तो कभी जानबूझकर की जाने वाली चोरी की वजह से। इसका नुकसान बिला आखिर आम सारिफ को होता है महंगे बिलों की सूरत में।
1: ऐसा ही है।
2: दूसरा बड़ा मसला है लोड शेडिंग और बिजली की तलब और रसद में फ़र्क। गर्मियों में जब बिजली की मांग बढ़ जाती है तो हमारे सिस्टम के पास इतनी पैदावारी सलाहियत नहीं होती कि वो पूरी कर सके। नतीजतन शहरों में तो कभी कभी लोड शेडिंग हो जाती है मगर देही इलाकों में कई कई घंटे बिजली गायब रहती है। तीसरा अहम मसला महंगी बिजली और गैर मौसर तकसीम है। हमें ना सिर्फ बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है बल्कि इसकी तरसील भी दुरुस्त तरीके से नहीं हो पाती। जिन इलाकों में ज़रूरत कम है वहाँ भी बिजली ज़ाया हो रही है और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ कमी का सामना है। अब सवाल यह है कि क्या इन मसाइल का कोई मुस्तकिल हल मौजूद है? तो वो जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे हैं कि स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी इनका एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कि इसमें AI बेस्ड डिमांड रिस्पांस जो है वो क्रिएट किया जाता है। स्मार्ट ग्रिड सिस्टम में मस्नूई जहानत की मदद से ये देखा जा सकता है कि कौन से इलाके में कितनी तलब है और कहाँ लोड कम या ज़्यादा है। इस तरह लोड मैनेजमेंट खुद बेहतर हो जाएगी और बिजली का ज़्याद भी कम हो जाएगा। दूसरा हल ये है कि बिजली चोरी की रोकथाम की जाए। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब से न सिर्फ हर घर का दुरुस्त डाटा मैसर होगा बल्कि गैर कानूनी कनेक्शन फौरी तौर पर पकड़े जा सकेंगे। ये निज़ाम हुकूमत के लिए भी आसान होगा और बिजली फराहम करने वाले इदारों के लिए भी
1: जी।
2: तीसरा हल काबिले तजदीद तवानाई का इंजमाम है। आज दुनिया में सोलर और विंड एनर्जी तेजी से बढ़ रही है। स्मार्ट ग्रिड की बदौलत हम मकामी तौर पर पैदा होने वाली शमसी या हवा की बिजली को कौमी ग्रिड में आसानी से शामिल कर सकते हैं। इससे बिजली की पैदावारी लागत कम होगी, माहौलियाती आलूदगी भी कम होगी और तवानाई का निज़ाम ज़्यादा मजबूत बनेगा
1: जी।
2: ये वक्त है कि हम रिवायती तरीकों से हटकर जदीद टेक्नोलॉजी अपनाएं। पाकिस्तान में अगर स्मार्ट ग्रिड सिस्टम को सही तरीके से नाफिज किया जाए तो न सिर्फ लाइन लॉसेस कम हो सकते हैं बल्कि लोड शेडिंग में भी नुमाया कमी आ सकती है। और सबसे अहम बात, आम सार्फीन के लिए बिजली सस्ती और मुसलसल दस्तियाब हो सकती है।
1: सर, आपने इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क किया है तवानाई से रिलेटेड और स्मार्ट ग्रिड्स के हवाले से, तो सर हमारे सुनने वालों को बताएं कि आपने किन पॉइंट्स पे अभी तक काम किया है।
2: जी, मेरी तहकीक जो है उसका बेसिक जो टाइटल था दैट वाज ऑप्टिमल पावर शेड्यूलिंग इन स्मार्ट ग्रिड्स एट डिमांड साइट। उसका कुछ जो अहम पहलू हैं उनका मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ कि बेसिक जो गोल था वो ये था कि घरेलू और कम्युनिटी सतह पर बिजली के मौसर इस्तेमाल के लिए ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो लागत को कम करे, बिजली के निज़ाम को मुतवाजन रखे और पीक लोड के मसाइल को हल कर सके। पाकिस्तान में इस हवाले से जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है वो कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान में बिजली के लिए TOU टैरिफ का निज़ाम राइज है जिसमें सिर्फ दो निर्ख होते हैं, एक पीक आवर्स के लिए और दूसरा ऑफ पीक आवर्स के लिए। यानी दिन के चंद घंटों में बिजली महंगी होती है और बाकी वक्त निस्बतन सस्ती। लेकिन दुनिया भर में जदीद स्मार्ट ग्रिड सिस्टम्स में रियल टाइम प्राइसिंग का निज़ाम अपनाया जा चुका है जिसमें पूरे दिन के 24 घंटे के लिए मुख्तलिफ रेट होते हैं। हर घंटे की कीमत अलग अलग तय की जाती है और ये तलब और रसद के मुताबिक बदलती रहती है। इसकी बदौलत सार्फीन अपने आलात को इन औकात में चला सकते हैं जब बिजली सस्ती हो और इससे पूरे सिस्टम में लोड मुतवाजन रहता है। बेसिक अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं जिनको मैंने यूटिलाइज़ किया वो कम्युनिटी बेस्ड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। मेरी तहकीक का पहला और अहम तस्वुर ये है कि इंफरादी घरों की बजाय कम्युनिटीज़ को एक यूनिट के तौर पे लिया जाए
1: जी।
2: यानी एक इलाके के तमाम घरों का लोड इज्तमाई तौर पर मुनज़्ज़म किया जाए। इससे मकामी सतह पर तवानाई का इश्तराक भी मुमकिन हो सकता है और लाइन लॉसेस भी कम हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वक्त पर मबनी आला जात की ग्रुपबंदी की जाए जिसको हमने टाइम बेस्ड डिवाइस क्लस्टरिंग का नाम दिया कि इस मॉडल में ऐसे तमाम बरकी आलात को शनाख्त किया जाए जिनका इस्तेमाल मुतवक्के तौर पर एक ही वक्त में होना है। इन आलात को अलग अलग क्लस्टर्स में तकसीम किया गया और क्लस्टर्स को बेहतरीन वक्त पर चलाने का फैसला एक एल्गोरिदम के ज़रिए किया गया। उस एल्गोरिदम का नाम PSO है, जो एब्रीविएशन है पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन की। ये एक जदीद तकनीक है जिसमें मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को पार्टिकल्स कहा जाता है और ये पार्टिकल्स मुसलसल बेहतर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे परिंदों का गोल एक दूसरे की रहनुमाई से मंजिल की तरफ परवास करता है, ये तरीका बेहतरीन वक्त और तरतीब के इंतखाब में मदद देता है
1: जी।
2: अगला नुक्ता इनक्लाइंट ब्लॉक रेट है, जिसमें हम सार्फीन को इजाफी खपत पर इजाफी निर्ख चार्ज करते हैं। इस IBR को भी हमने अपनी रिसर्च में शामिल किया, जिसका मकसद ये था कि अगर कोई सारिफ या कम्युनिटी अपनी हद से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करे तो इस पर जुर्माना लागू किया जाए, यानी बिजली का निर्ख खुद ब खुद बढ़ जाए। इससे लोग मोहतात रहते हैं और पीक लोड पैदा होने का ख़तरा कम हो जाता है। और इसकी एक वजह यह भी है कि अगर आप पाकिस्तान में भी कोई एक घंटा ऐसा रख दें जिसमें बिजली का निर्ख बाकी औकात के मुकाबले में 10% रह जाए, तो उस वक्त अगर वैसे बिजली कम भी इस्तेमाल होती थी तो क्योंकि रेट वहाँ पे कम कर दिया गया है तो लोग अपने आलात को उन औकात में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं।
1: सर, उस टाइम पे जो लोड है वो ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा फिर?
2: वो यही होता है कि जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइस कम करेंगे, गो के वहाँ पे पहले उसकी खपत कम थी, लेकिन डिवाइसेस जब उस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी तो पीक एक जगह से हट के दूसरी जगह क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए फिर हम वहाँ पे इनक्लाइंट ब्लॉक रेट लगा देते हैं, सो दैट के एक थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा कोई बिजली इस्तेमाल करे तो फिर उसको पेनल्टी चार्ज होती है, वो फिर उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है। फिर रियल टाइम प्राइसिंग जो है इसको पाकिस्तान में भी यूज़ किया जा सकता है, कि जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ TOU चल रहा है, जो दो कीमतों का निज़ाम है। तो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग की बेस पे आप पूरे दिन में जहाँ जहाँ तलब और रसद में फ़र्क आ रहा है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमने अपनी रिसर्च में रियल टाइम प्राइसिंग को इनकॉर्पोरेट किया और फिर इसके साथ हमने एक ट्वीक जो उसमें किया वो ये था कि हमने रियल टाइम प्राइसिंग को भी सर्कुलर शिफ्ट दे दी। अगर तमाम सार्फीन कम कीमत वाले औकात में अपने बरकी आलात इस्तेमाल करने लगें तो भी पीक लोड क्रिएट हो सकता है, जिससे अभी हमने पहले बात की। इसका हल मैंने अपनी तहकीक में CSRTP की सूरत में पेश किया। इस मॉडल में हर कम्युनिटी को थोड़े से मुख्तलिफ रेट्स दिए जाते हैं, कि जैसा यहाँ जोहर टाउन है यहाँ के लिए कुछ और रेट होगा, करीबी वाकटा टाउन है उसको एक अलग कम्युनिटी तस्वर किया जाए और उसमें जो पीक आवर्स हैं वो थोड़े से शिफ्ट कर दिए जाएँ, ताकि तमाम कम्युनिटीज़ एक ही वक्त में अपने आलात ना चलाएं बल्कि मुख्तलिफ औकात में तकसीम हो जाए,
1: लोड बैलेंस हो जाए।
2: जी, लोड बैलेंस हो जाएगा उससे। इससे पूरे सिस्टम पर जो इफेक्ट है वो यही आता है कि लोड बैलेंस हो जाता है और तरसील जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है। इन तमाम पॉइंट्स को यूज़ करते हुए जब हमने सिमुलेट किया एक डमी बिजली के लोड के ऊपर, तो जो लागत थी उसमें तकरीबन 45% तक कमी हुई और पीक टू एवरेज रेशो तकरीबन 38% तक रिड्यूस हुई। और इसके अलावा जो बिजली की खपत का पैटर्न है वो आम तौर पर तो बहुत गैर हमवार होता है, उसमें ऊंच नीच बहुत ज़्यादा होती है, हमारी एल्गोरिदम के इस्तेमाल से उसकी वेरिएशंस जो हैं वो भी रिड्यूस हो गई थी। मेरी तहकीक से ये बात वाजे हुई कि अगर हम कम्युनिटी बेस्ड पावर्स शेड्यूलिंग के ऊपर काम करें, इसके साथ PSO एल्गोरिदम को अप्लाई करें और IBR और CSRTP जैसे जदीद तरीके अपनाएं, तो ना सिर्फ बिजली का ज़िया रोका जा सकता है बल्कि बिजली की तकसीम, लागत में कमी और कौमी ग्रिड के इस्तेहकाम में भी नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। मेरी ख्वाहिश है कि ये सिस्टम पाकिस्तान की तवानाई पॉलिसी में भी शामिल हो, ताकि हमारा मुल्क भी दुनिया के तरक्की याफ्ता स्मार्ट ग्रिड सिस्टम।
1: सर, ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश नहीं है, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि हम अपनी इस तरह की वीकनेसेस को ओवरकम करें और तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ के साथ हम उसकी लिस्ट में हम शामिल हो जाएं। अच्छा सर, हमारे प्रोग्राम का टाइम चूँकि लिमिटेड है, हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारे सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहें।
2: जी, अगर इसको मैं समराइज़ करूँ तो वो यूँ ही किया जा सकता है कि तवानाई की खपत हमने जिस स्टार्ट में बात की कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी बड़ी वजूहात जो हैं वो आबादी में इजाफा, सनती तरक्की और रोज़मर्रा सहूलतों का बढ़ना है। रिवायती तवानाई के ज़रिए महदूद हैं और माहौलियाती मसाइल का सबब बन रहे हैं। मुस्तकबिल में तवानाई की तलब मज़ीद बढ़ेगी, जिसके लिए पायदार काबिल तजदीद ज़राए की तरफ जाना नागुज़ीर है। तवानाई के मौसर इस्तेमाल में रिहायशी शोबा अहम किरदार अदा कर सकता है, जहाँ बिजली की बचत से मजमुई तलब में कमी लाई जा सकती है। तवानाई के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जा रही है, जो AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से बिजली की तरसील और तकसीम का खुदकार, मौसर और दो तरफा रबते वाला निज़ाम बनाती है। यूरोप में और चाइना में स्मार्ट ग्रिड के कामयाब मॉडल्स और प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, جن سے توانائی کی بچت، خرابیوں کی فوری شناخت اور قابل تجدید ذرائع کا انضمام ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ ہوم ٹیکنالوجی جیسے سمارٹ تھرموسٹیٹس، ایل ای ڈی لائٹس اور انرجی ایفیشنٹ ڈیوائسز بھی توانائی کی بچت میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ مجموعی طور پر ہمیں توانائی کے مؤثر انتظام، پائیدار نظام کی تشکیل اور ماحول کے تحفظ کے لیے اجتماعی طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے بھی ایک محفوظ اور صاف توانائی کا مستقبل یقینی بنایا جا سکے۔
1: ڈاکٹر محمد عدنان صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ جی سامعین، آپ نے سنا کہ آج کی گفتگو بہت انفارمیٹیو رہی۔ ہم نے جانا کہ اسمارٹ گریڈ صرف ایک جدید ٹیکنالوجی نہیں بلکہ توانائی کے مسائل کا دیرپا اور مؤثر حل ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اے آئی اور انٹرنیٹ آف تھنگس کس طرح بجلی کی بہتر تقسیم، توانائی کی بچت اور ماحول کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے نہایت سادہ اور مؤثر انداز میں اسمارٹ گریڈس، مائکرو گریڈس اور اسمارٹ ہومز کے فوائد واضح کیے اور اپنی ریسرچ کے اہم پہلو ہمارے سامنے رکھے، جو یقیناً قابل قدر ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جلد یہ جدید ٹیکنالوجیز رائج ہوں تاکہ نہ صرف توانائی کا بحران کم ہو بلکہ صارفین کو سستی اور مستحکم بجلی کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ اجازت دیجیے آپ کی میزبان آمنہ محمود کو۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، توانائی کی بچت کیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Live Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: मुहावरा कहा जाता है कि घाट घाट का पानी पीना, तो आपने घाट घाट का पानी पिया। ये वैसे जितने, जिस तरह आपने बताया कि आर्मी से जितने लोग ताल्लुक रखते हैं, आर्मी के जो बच्चे हैं यानी उनके जो सर्विंग जो हमारे जवान हैं या ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चों को ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उनकी लाइफ बड़ी डाइवर्सिफाइड है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी शख्सियत पे ज़्यादा रहा या क्या, कैसे आप इसे जब रिकॉल करते हैं आज की तारीख में?
1: मेरे ख्याल में पॉजिटिव इम्पैक्ट मुख्तलिफ एक डिस्ट्रैक्शन तो होती है आपकी तालीम में, लेकिन उस वक्त प्रॉब्ली इतना हम लोग उसको तालीम पे उस तरह इतना प्रेशर नहीं था जो आजकल है, मतलब जो कॉलेज
0: ग्रेड्स की, ग्रेड्स की एक दौड़ है।
1: मुझे याद है कि हमें इस तरह नहीं था कि हमने बिल्कुल वो बहुत उसमें बचपन पे ही आपने उस पे ज्यादा फोकस, उसमें ज्यादा था कि हाँ हम लोग बहुत कुछ नई चीजें सीखते थे। अडेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है आप एक नए स्कूल में जाके, अब लोग डिप्रेस हो जाते हैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हैं या एक चेंज आता है थोड़ा सा भी, तो वो डिप्रेशन एक ऐसी चीज आ गई है जो पहले नहीं थी। अब वो फ्रेंड्स कौन है और ये कौन है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो उस वक्त ये नहीं था। आई थिंक हमने उसको, मैं समझता हूँ पॉजिटिव असर हुआ मेरी लाइफ में। इवन कैडेट कॉलेज जैसे हम में 5 साल हम घर से भी दूर हो गए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा दूर ही रहे। कराची में वो थे उस वक्त पोस्टिंग, तो मैं हसन अब्दाल में था, 1000 मील का सफर। फिर मैंने कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन की आफ्टर एफएससी, मेरे पेरेंट्स सऊदी अरेबिया चले गए, तो मैं तो दूर ही रहा। तो छुट्टियों में समझे कि 8वीं जमात से हम छुट्टियों में घर जाते थे।
0: सही। तो आपने पाकिस्तान एयरफोर्स जिस तरह आपने जिक्र किया कि ज्वाइन की, तो हसन अब्दाल में जो बच्चे जा रहे होते हैं वो ज्यादातर उनका यही पाथ होता है, तो ये आपका एक वो आप उस पाथ पे चले गए या एक आपका पैशन था टू ज्वाइन फोर्सेस?
1: नहीं नहीं, मेरा कोई वो नहीं था। एक्चुअली हमारे वहाँ पे इस तरह डिवीजन था, आर्म फोर्स में कम जाते थे क्योंकि पीएफ कॉलेज सरगोधा और वो उनके अपने कॉलेजेस थे एयरफोर्स के ना। आर्मी का ट्रेंड था, मैं समझेंगे 30% आर्मी, 30% 25% डॉक्टर और 25-30% इंजीनियरिंग साइड पे जाते थे, और बाकी कुछ कैरियर तो बहुत कम थे जो दूसरे, लेकिन जनरली मेजर यही था। तो मेरे चूंकि फादर एयरफोर्स में थे और एक इंजीनियरिंग मुझे उन्होंने, क्योंकि वो डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैं इंजीनियर, हमारे डॉक्टर बहुत हैं फैमिली में, तो तुम बेटा मैंने फिर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में मैं आ गया, तो ऑप्शन इंजीनियरिंग का था, तो मुगलपुरा में भी दाखिला हो गया था। लेकिन एयरफोर्स में चूंकि मेरे वालिद साहब थे और पॉलिटिकल हालात जिस तरह, वो सबको असर करते हैं, तो मैं इसलिए पॉलिटिकल जो भी अभी हो रहा है या जब भी होता है, मतलब हर शख्स इससे हिल जाता है, तो उस वक्त तो यही हालात थे 71 में, समझें कि वो वॉर का भी चक्कर था और भुट्टो साहब का जमाना था, इंजीनियरिंग कॉलेजेस सब कॉलेजेस में पढ़ाई, लंबी लंबी लोग स्ट्राइक्स और वो और स्टूडेंट यूनियन और एक एक तमाशा था। तो वो 4 साल का कोर्स 6 साल में हो रहा था, तो इसलिए मैं जब एयरफोर्स में, फादर वालिद ने यही कहा कि इंजीनियरिंग एक अच्छा है, एरोस्पेस एक अच्छा है, दारा अच्छा है, एयरफोर्स की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, तो अच्छा है, तो इसलिए मैंने एयरफोर्स में अप्लाई किया, तो हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है 4 साल में हमने हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई।
0: मतलब एक पूरा करियर पाथ है। आपने कमीशन लिया, मतलब एयरफोर्स में कमीशन वगैरह लिया, तो कितने साल आप वहाँ पे सर्व किया और क्या आपकी वहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे?
1: जी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो एक ऐसा जो फर्स्ट करियर होता है ना, वो आप जिस तरह भी करें वो आपको लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, आपने उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हैं और उसका कई दफा लिंक आपका जो पढ़ा होता है उससे नहीं होता। मैं इसलिए ये कहता हूँ कि आपने एक प्रैक्टिकल चीज लाइफ में सीखनी है, और कई दफा वो आपकी हो सकती है जो थ्योरेटिकल नॉलेज आपने ली होती है वो आपकी कितनी अप्लाई ना हो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली होती है, ये आपका एक आपके पास डिग्री होती है आपके पास होता है। तो हमारा भी यही था कि इंजीनियरिंग की डिग्री तो ठीक है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन ज्यादा डिजाइन और उस साइड पे थी, अब वो डिजाइन और वो एरिया सिर्फ उस वक्त नहीं थे, अभी तो काफी चीजें डिफरेंट हो गई, लेकिन एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन में वो था। अब जैसे मास्टर्स पीएचडी कर ली तो वो ज्यादातर वो टीचिंग इंस्टीट्यूशन में उनकी वो ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, लेकिन एयरफोर्स का करियर जो था वो आपका बेस्ड ऑन जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब जहाजों को आपने हर वक्त उसको रेडी रखना है और 100% में आके सिर्फ सर्विसिंग और हर लेवल पे उसकी फर्स्ट सेकेंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है हर लेवल पे उसके सेंटर हैं एयरफोर्स में, एक कामरा में बन गया था एक, उसको डेपो कहते हैं जो हायर लेवल मेंटेनेंस। तो मुझे इत्तेफाक से एयरफोर्स करियर मेरा 15 साल मेरी सर्विस सर्व किया, लेकिन वो एक हर लेवल पे मैंने एक्सपीरियंस किया, फर्स्ट सेकंड लाइन थर्ड लाइन हर टाइम से मुझे मतलब मौके मिलते रहे टू गेट इनटू सम हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल लर्निंग. तो कामरा में फिर मैं 8-9 साल का मेरा कामरा का एक्सपीरियंस है जो आखिरी पीरियड. तो बहुत अच्छी मेरी लर्निंग थी टेक्निकल साइड पे और लोगों की भी मैनेजमेंट साइड पे, बिकॉज लोगों को हम मैनेज करते थे ऑन टेक्निकल प्रोजेक्ट. तो बेसिकली
0: बिल्कुल ठीक. आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग हमने लाइफ स्टोरी हमारी चल रही है, लेकिन वक्त हुआ इस वक्त प्रोग्राम में म्यूजिक ब्रेक का, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी जिंदगी में आपने अपनी बुक में लिखा है जो आपका एक इवेंट हुआ जिसने आपकी पूरा थॉट प्रोसेस चेंज किया, और आप किस तरह बुक की तरफ आए और किस तरह आपने फेथ और लीडरशिप के कॉन्सेप्ट से जो एक आपने उसको मर्ज करके जो कॉन्सेप्ट आपने निकाले जिससे लोग बड़े बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, उसको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद.

0: ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और उम्मीद है कि आपने म्यूज़िक एंजॉय किया होगा। और प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ और हम आज बात कर रहे हैं मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा साहब से और इनकी हमने लाइफ को डिस्कस कर किया, इनकी बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं। नवीद मिर्ज़ा साहब, आपने जो अपनी किताब में एक चीज़ मेंशन की है कि हम बहुत दफ़ा अपनी लिमिटेशन से उस पार नहीं देख सकते जहाँ पे हमें देखना चाहिए, और फेथ हमें एम्पावर करता है कि हम उस तक पहुँच सकें और उसको एनेबल हो जाएं कि हम उससे बियॉन्ड देख सकें। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि आप सर्कल ऑफ लाइफ को या साइकिल ऑफ लाइफ को आप, तो मैं चाहूँगा हमारे सामीन से डिस्कस करें कि किस ये साइकिल ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है।
1: साइकिल और सर्कल ऑफ लाइफ को इस तरह मैंने देखा कि मेरा पहला आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन या स्टडीज का दौर तो बहुत एक डिफरेंट होता है ना, और उसके बाद अब एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो एक और एक आपका एक फर्स्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्टार्ट होते हैं। वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आप अपने आप को वैल्यूएट कर लेते हैं, कई दफ़ा आप ऐसी जॉब ले लेते हैं जहाँ पे आप खुश नहीं होते हैं और आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको मिल जाती है आइडिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलती है। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो कॉम्प्रोमाइज आप करते रहते हैं, दो साल किया, चार साल किया, एक वक्त आता है आप इंटरेस्ट लूज कर देते हैं उस जॉब में या आप उस चीज में, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आपकी सेट इन हो जाती हैं। और लोग ज्यादातर उन फ्रस्ट, क्योंकि तनख्वाह पैसे मिल रहे होते हैं, तनख्वाह मिल रही होती है, और वो एक चीज आपकी एक ऐसी चीज को आप ले लेते हैं जो आपकी केबिलिटी से कई दफा बहुत कम होती है, आपकी केबिलिटीज कहीं उससे ज्यादा होती है। आपको कोई मेंटर अगर मिल जाए तो वो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, कई दफा आप वहीं फंस जाते हैं तो स्टक हो जाते हैं, वो रट कहते हैं उसको, जिसमें आप जिसे राउंड एंड राउंड आप रोज 80-90% लोग उसी रट में होते हैं। कुछ लोग रट से बाहर निकल जाते हैं, तो और रट के वजह से कहते हैं ना, एक अगर आप माउस हैं तो वो अगर आप रट में हैं तो एंड ऑफ दैट डे यू आर स्टिल अ माउस। तो उससे आपको एग्जिट करने के लिए आपको एक कोई एफर्ट लगाना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वालिफिकेशन लोग ले लेते हैं, कुछ उनको अपने आप को एक कॉन्शियसली आउट ऑफ द कंफर्ट जोन आपको करना पड़ता है, तभी आप निकलते हैं। और वो पीरियड में तो मिड लाइफ कभी 10 साल बाद होता है, 5 साल होता है, कुछ जल्दी हो जाता है, तो ये कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। फिर आप सेकेंड सर्कल में आ जाते हैं। सेकंड सर्कल में मेरी पहले से थोड़ा डिफरेंट होता है, मे बी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में भी आप कुछ लर्निंग होती है, लेकिन अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट इज अवेयरनेस के यस यू कैन ब्रेक दोज ओल्ड बैरियर्स, यू आपकी उसमें है। और फेथ को अगर आप साथ रखें, जाहिर है आप उसमें एक बहुत कई दफा आपको एक एक डेयरिंग स्टेप्स लेने पड़ते हैं, वो डेयरिंग स्टेप्स लिए बगैर आप उस पार नहीं जा सकते हैं। और कभी तो होता कुछ नहीं है डेयरिंग स्टेप लेने से, आपको यही होता है लोग क्या कहेंगे, कई दफा लोग कुछ नहीं कहते, आप ऐसे ही वरी कर रहे होते हैं कौन क्या कहेगा वो तो आपका अपना फेथ है जो आपको फिर वो आप बरकरार रखें, परसिस्टेंस रखें और एक एक, एक लिख लें अपने के कान जाना का है और चेंज करते रहें उसको। और फिर लाइफ इज नॉट 5, 10 years, 15 years आफ्टर योर ग्रेजुएशन, लाइफ इज गोइंग टू टेक यू टू, अगर आपको जिंदगी अल्लाह ताला दे तो समझे 90 years पे भी लोग एक्टिव हैं और आप 60 पे भी रिटायर हो जाएं, स्टिल यू हैव आई थिंक 30 years एक फुल करियर है। आप लिखना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट।
0: अच्छा नवीद साहब, मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कि हमने कुछ बैरियर्स अपने ख़ुद से डिफ़ाइन कर लिए होते हैं और हम उससे निकल नहीं पाते, और हम ये यकीन कर लेते हैं कि ये हमारी लिमिटेशन है और हम इसके हम इतना ही कर सकते हैं। तो जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं वो क्या ऐसी प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं कि जो बैरियर को ओवरकम करने के वाले से हेल्पफुल हो?
1: तो वो सी मैंने बात की थी पहले, अवेयरनेस। कि अवेयरनेस अगर नहीं है, आप कहते हैं नहीं, इससे तो माशरा ऐसे ही है, मुल्क ऐसे ही है, हमें कंडीशंस ऐसी हैं, उसका कसूर है, इसका कसूर, यू नो एक्सक्यूजेस,
0: ब्लेम गेम
1: तो वो सबसे एक डैमेजिंग होता है। एंड ऑफ द डे आपके कंट्रोल में है, आपने जो स्टेप लेना है, लोग करते हैं जो स्टेप लेते हैं, डेयरिंग स्टेप्स लेते हैं और अपने फेथ पे कायम रहते हैं और अपना डिफाइन करते हैं मुझे ये करना है, तो फियर को वो ओवरकम करते हैं, बिकॉज फियर इज योर एनिमी। फियर को आप नेगेटिव सेंस में उसको शैतान कह दें, जो भी कह दें, वो आपको रोक रहा होता है स्टेप्स लेने से। तो वो एक लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो आपके साइकी में चले जाते हैं, वो लिमिटिंग बिलीफ्स को जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो वो उसका लिखना, इसलिए मैं बहुत एम्फोसाइज करता हूँ कि जब आप लिखते हैं और सोचते हैं, गौर करते हैं, تو اس سے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے, تو پھر آپ ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں. جب تک وہ ایک بہت بڑا ایک آپ کے ایک ایک بھالو آپ کے اندر بیٹھایا ہوتا ہے, آپ نے آپ کو روک رہا ہوتا ہے, آپ اس کو باہر لے آتے ہیں تو آپ وہ مینیجیبل ہو جاتا ہے.
0: بہت اچھی خوبصورت بات کی آپ نے, اور آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وقت کا بالکل اندازہ نہیں ہوا, اور ہم اپنے پروگرام کے بالکل اختتام کی طرف جا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس وقت آپ کو جو یوتھ اسپیشلی سن رہی ہے اس کے لیے آپ کا کوئی میسج کہ کس طرح سے وہ اپنے پوٹینشیل کو فلی ایکسپلوئٹ کر سکیں, اور کس طرح سے وہ اپنی انرجیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو جو بھی ان کی زندگی میں گولز ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, ان کو اچیو کر سکیں.
1: ہر ایک انڈیویجول, جو بھی بچے سن رہے ہیں اس براڈ کاسٹ کو, آپ انڈیویجول ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فیکلٹی دی ہے جو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ اس ایک روٹین میں نا ہم وہ بھول جاتے ہیں کہ امیجنیشن, امیجنیشن از سچ اے بگ گفٹ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں, اس کو موو کریں تو ہم بن سکتے ہیں. تو امیجنیشن کو کبھی چھوٹا نہ رکھیں. آپ جتنا بھی جو بھی آپ کی ابھی لمیٹیشنز ہیں اس کو تو آپ بھول جائیں, لیکن آپ امیجن کریں کہ آپ میکسیمم امپیکٹ دنیا میں لا رہے ہیں, یا جو بھی آپ کا رول ہے, مے بی آپ کا پیرنٹ کا رول ہے, آپ بیسٹ پیرنٹ ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ارتھ شیٹرنگ کوئی کام کریں, لیکن آپ کی امیجنیشن کا آپ اس پہ لمٹ نہ لگائیں. اینڈ رائٹ ڈاؤن یور گولز اینڈ میک دیم, دین یو ول ڈیفینیٹلی 100% ان فیتھ, اگر آپ اس پہ موو کرتے رہیں, آپ کو پیشنس کے ساتھ اور امپیشنٹ نہ ہوں. اینڈ آئی تھنک 10 to 15 years, گیو یور لائف 10 to 15 years از نتھنگ فار یور لائف ٹو اچیو آؤٹ اسٹینڈنگ سکسیس. بیچ میں اگر آپ رک جائیں گے تو پھر آپ کی تھوڑی لمٹ ہو جائے گا. تو آپ نے 10 to 12 years آپ نے پیشنس اپنے ضرور آپ نے پیشنٹلی آپ نے کرنا ہے ٹورڈز دیٹ امیجنڈ گول.
0: آپ نے بڑی اچھی بات کی لکھنے کی اور امیجینیشن کو لمٹ نہ کرنے کی. اب امیجینیشن کے بعد کیا ایسے ڈسکریٹ سٹیپس ہیں جو کہ جنرل ہیں, جو کہ لے کے ہماری جو یوتھ ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟
1: امیجینیشن آپ کی, اس کو لمٹ نہ رکھیں, اس کو ہر ایریا میں آپ اپنے آپ رکھیں, کیونکہ بیلنس ہوتا ہی ہے. ہم ایک چیز کو تو امیجن کر لیتے ہیں, ایک چیز پہ ہم گول رکھ لیتے ہیں, مے بی فائنینشیل گولز ہیں کچھ ہیں, لیکن اگر آپ ایسا کریں کہ آپ لوگوں پہ کیا امپیکٹ ڈال رہے ہیں, تو اس میں پھر ہوتا ہے کہ وین اٹس پیپل اورینٹیڈ, وین اٹس سینڈنگ جوائننگ پیپل ٹوگیدر اور کریئٹنگ مور لیڈرز اور کریئٹنگ مور امپیکٹ تھرو یور سروس, تھرو پروڈکٹ, اور آپ کے ریلیشن شپس, اس میں آپ کے فیملی ریلیشن شپس ہیں, یہ بہت ضروری ہیں. اگر آپ اس پروسیس میں باقی چیزیں لوز کر دیں تو پھر آپ نے کچھ نہیں پایا اینڈ پہ نا, جتنے بھی آپ نے کما لیا. تو سب کو لے کے چلیں آپ اس پوری ایریا کو. آپ نے اگر دین آپ چھوڑ دیا, آپ نے غلط راہ پہ چلے گئے, تو اپنی اسپرچل سائڈ, اپنی فزیکل سائڈ, آپ کی جو آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے, اپنی ریلیشن شپس کو, سب کو ساتھ لے کے چلیں, ایک بیلنسڈ لائف رکھیں, اینڈ آپ اپنی منزل پہ اچھی خوب طرح سے پہنچیں گے.
0: بہت خوبصورت میسج آج ہمارے لیے اس نشست میں تھا کہ ہم نے اپنے لائف کو لمٹ لیس, اپنے جو گولز ہیں ان کو لمٹ لیس کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ ایک بیلنس اور ایک ہارمنی کریٹ کرنی ہے اس جو ہمارے گولز ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, اس کو اچیو کرنے کے لیے. امید ہے کہ آپ نے بھی میری طرح بہت آج کی نشست سے سیکھا ہوگا, اور ہم اسی طرح کی انسپریشنل پرسنالٹیز آپ تک لاتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے علی اشرف کو پروگرام منزل سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

www.music.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। अब मैं आपकी मेज़बान तहज़ीन अली आपको प्रोग्राम नख़्ल अदब में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत पॉजिटिव गुजरा होगा, आपने कुछ नया किया होगा, और अगर कहीं पे नेगेटिविटी आई भी होगी तो आपने उसको पॉजिटिव तरीके से ही हल किया होगा। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर बात करनी है वो ज़रा हट के है। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से मुतल्लिक, उनके मसाइल और कैसे वो बेहतर हो सकते हैं। और इसी सिलसिले में हमने आज जिनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है, मोहम्मद वलीद खान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। वलीद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। मुझे अंदाज़ा है कि कितनी टफ रूटीन है और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि व्हाट आर यू डूइंग एंड अदर स्टफ।
3: बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो शोबाए सहाफत से है, और जो है वो मैं काफ़ी अरसे से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। 2017 में मैंने आगाज़ किया था, और उसके बाद जो है वो स्पोर्ट्स से मोहब्बत की वजह से, स्पोर्ट्स मैनशिप होने की वजह से और स्पोर्ट्स मैन होने की वजह से जो है मैंने इस फील्ड का इंतखाब किया कि मुझे सहाफत में जाना चाहिए। तो फिर सहाफत चलती रही और उसके साथ साथ दीगर चीज़ें भी साथ अटैच होती गईं, और प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान चला गया। प्रोडक्शन भी की और खूब की पाकिस्तान के लिए। तो अब जो है वो आजकल जो है वो प्रोडक्शन की तरफ भी रुझान है और सहाफत की जिम्मेदारियां भी निभाई जा रही हैं।
2: वलीद, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, अगर हम सबसे पहले बात करें कि इस वक्त हमारी सहाफत में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में इस वक्त क्या सबसे बड़े मसाइल हैं?
3: बेसिकली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है वो शायद बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत आसान है। आजकल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को हम लोगों ने वन साइडेड जर्नलिज्म कर दिया है कि क्रिकेट जिसको आती है, क्रिकेट के जिसको दो चार खिलाड़ियों का पता है वो खुद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहने लग पड़ा है। लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होना जो है वो एक बड़े एजाज की बात है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को कवर करना होता है, इंटरनेशनल गेम्स को कवर करना होता है। जैसे हमारे खिलाड़ी अपने मुल्क के सफीर होते हैं, इसी तरह से हम जो हैं वो भी उन खिलाड़ियों को पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये कि आप किसी खिलाड़ी को पोर्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आगे बात होती है, पाकिस्तान का इमेज होता है। तो उस इमेज को भी देखते हुए पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है उसको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। बहुत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो है वो गेम्स में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो क्रिकेट देख के, क्रिकेट पढ़ के और क्रिकेट को समझ के सहाफत में आए हैं। तो ये जो है खेलों से ताल्लुक जो है एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का, ये बहुत जरूरी है। जब तक एक जर्नलिस्ट का खेलों में इंटरेस्ट नहीं होगा वो उस तरह से सहाफत कर नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि एक सहाफी का काम होता है कि खबर देना। तो खबर जो है वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है, खबर ढूंढनी पड़ती है, और खासकर बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं जिनको हमें रोकना पड़ता है कि इसमें पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनको जो है वो उनका इमेज है एक चीज। तो हमें उस चीज़ को बड़ी जिम्मेदारी से जो है वो निभाना होता है, उस खबर को भी आगे आवाम तक पहुंचाना होता है। आजकल आपने मसाइल की बात की, तो सहाफत में ओवरऑल बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सहाफत में जो है वो कुछ इदारों की तरफ से भी मसाइल हैं, कुछ हकूमती नुमाइंदे उनकी तरफ से भी मसाइल हैं, और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि सहाफत में गलबा पा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को मसाइल एज सच इस तरह से हैं कि बहुत से सहाफ़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाके सहाफत की जिम्मेदारियां निभाते हैं उन पर पाबंदियां आजकल आयद करना शुरू कर दी गई हैं, उनको जो है वो मैचेस कवर करने से रोक दिया गया है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला आजकल सहाफ़ियों को तो यही दरपेश है कि

0: हैं, इतनी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें आपको पता होंगी। तो एक खिलाड़ी के लिए सहाफत में जाना भी एक एजाज की बात है, और जब तक एक सहाफी जो है वो प्रॉपर तरीके से स्पोर्ट्स को देखेगा नहीं, स्पोर्ट्स को समझेगा नहीं, तो उसको उस तरह से सहाफत आएगी नहीं। आजकल हमारे जर्नलिस्ट भी जिसके पास एक कैमरे वाला फोन है और एक अच्छा ट्विटर अकाउंट है, तो वो उसको जो है वो अब खुद को सहाफी कहने लग पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पे बैठे हुए हैं, जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, व्लॉग्स करते हैं, तजिये देते हैं अपने, लेकिन जो एक क्रिकेट एक्सपर्ट का तजिया है, जो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का तजिया है, वो उनसे बहुत मुख्तलिफ होता है। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा।
1: बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि स्पोर्ट जर्नलिज्म के क्या मसाइल हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
2: जदो राती चन्न निकल दाए, जदो काले पत्तल छांदे ने, इस बेरंगी जी दुनिया विच कुछ लोग

0: कोई हमारी तस्दीक हो रही होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज है मीडिया में। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको हर बीट में जाना चाहिए, ना कि आप सोचें कि मैंने क्राइम नहीं लेनी, मैंने ये सियासी बीट नहीं लेनी, मैंने स्पोर्ट्स नहीं लेनी, मैंने एक इन हाउस लेना है। बहुत सी हमारी खवातीन है जिनको चाम है कि हम टीवी पे आए बस, वो टीवी के पीछे जो एफर्ट हो रही होती है ना उसको नहीं देखती। आप जितनी भी सीनियर रिपोर्टर्स देख लें, जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट देख लें, एंकर्स, जिसमें नसीम जारा है वो भी पहले रिपोर्टर थी, अबसा कोमल कर रही है वो भी रिपोर्टर थी, गरीदा फरूकी भी रिपोर्टर थी, तो जितनी भी सीनियर आई उन्होंने हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया कि वो कौन सी बीट कर रही हैं, क्या कर रही हैं क्या नहीं। वो हिचकिचाहट के बगैर जो है वो गई और उन्होंने जाकर अपना काम किया, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स थी। आजकल हमारी जो यंगस्टर लॉट है वो शायद समझती है कि जर्नलिज्म इज टिकटॉक। तो ये टिकटॉक से निकल के जब सड़कों पे जाके आप खबर नहीं होंगे, आप खबर के लिए नहीं कोना कोना जो है वो देखेंगे कि मुझे खबर कहाँ से मिल रही है, तब तक आप सहाफी नहीं बन सकते। अच्छा। मैं टीवी के सामने बैठ के पढ़ा लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ, कोई बच्चा बैठा लेंगे वो भी पढ़ सकता है, तो फिर मैं सहाफी किस चीज का हूँ जब देख के ही पढ़ना है मैंने। जब आप रिपोर्ट में जाते हैं, रिपोर्टिंग में जाते हैं, आज भी आप सीनियर सहाफियों को देखते हैं जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, वो अपने साथ ना रिपोर्टर लगाना पसंद करते हैं, वो एंकर पर्सन लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि जर्नलिस्ट वही होता है मेरे ख्याल में, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कि जो रिपोर्टिंग करता है। जब तक आप खबर नहीं निकालेंगे आप सहाफी नहीं है, और खबर भी क्रेडिबल सोर्सेस से, ये नहीं कि अच्छा आज वो मुझे पता चला है कि बाबर आजम की कल शादी है तो मैं वो तमाम टीवी चैनल्स पे चला दूंगा और बाद में पता लगेगा, ये तो है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से जो वेमेन रिप्रेजेंटेशन है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एटलीस्ट होनी चाहिए। अभी आप अगर पूरे लाहौर के चैनल देखें या पूरे पाकिस्तान के भी अगर मैं आपको बता दूं, तो हमारे पास मेरे ख्याल से 12 से 13 लड़कियां हैं जो एज अ रिपोर्टर काम कर रही हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई पूरे पाकिस्तान में लड़की नहीं है जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में काम कर रही है। 12 भी मैं वो रैंडम फिगर बता रहा हूँ, इससे शायद कम ही है। तो मैं जो लाहौर में है वो तो एक है, हादिया फयाज, वो एक्स क्रिकेटर भी रही हैं, तो वो इस वजह से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आ गई और वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रही हैं। इससे पहले भी बड़ी सीनियर रिपोर्टर्स निकली लेकिन वो उस तरह से जो है वो कामयाब नहीं हो सकी रिपोर्टिंग फील्ड में। लेकिन जो एक नाम है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता, वो चैनल 5 की रिपोर्टर है सदफ, जिनका एक हादसे में इंतकाल हो गया। वो एक पैशनेट जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थी और वो पैशनेट स्पोर्ट्स रिपोर्टर थी। तो वो बहुत सी खवातीन की आइडियल हैं, लेकिन क्या हम उनको एक प्रोजेक्शन नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम सहाफियों की प्रोजेक्शन नहीं होती। हम उनको एक प्रोजेक्शन ये नहीं दे पा रहे कि वो हमारा नाम था, हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड पे तो उनका नाम लिखवा दिया, लेकिन उसके बाद ना उनकी बरसी पे कुछ किसी ने उनको याद किया, ना किसी ने उनको कोई इवेंट पे याद किया। हाँ ठीक है, एक नाम लिखा गया, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से ख्वातीन की प्रोजेक्शन के लिए, मीडिया में प्रोजेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि आप उनको उनकी आइडियल्स दिखाएं कि ये आपकी आइडियल्स हैं, आपकी आइडियल्स टिकटॉक नहीं है, आपकी आइडियल्स ये रिपोर्टर्स हैं जो फील्ड में जाके हर मुश्किल का मुजाहरा करने के बाद एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करती है, एक अच्छी खबर आप तक पहुंचाती हैं।
1: अच्छा, आपने शाइनेस की बात की, ये स्पोर्ट्स एक मेल डोमिनेंट स्पोर्ट है, व्हाट डू यू थिंक के जो हरेसमेंट की केसेस होते हैं फीमेल रिपोर्टर्स के साथ, या जो मीडिया बॉक्सेस में लड़कियां बैठती हैं यहां वहां पे बैठने वाली लड़कियों से, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है फीमेल्स के लिए।
0: बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की, हरेसमेंट जो है अभी तक मैंने अपने मीडिया बॉक्सेस में नहीं देखी। दे आर लाइक बॉयज टू अस, और हम उनसे स्ट्रेट जो हम सहाफ़ी या प्रोफेशनल गुफ्तगु जो हैं वो करते हैं। हम कोई इसमें वो चीज़ नहीं, कोई वो नहीं करते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि यार ये खातून है ये क्या। जब वो फील्ड पे हमारे साथ मुकाबले में खड़ी है तो वो एक खातून नहीं रहती, वो एक प्रोफेशनल सहाफ़ी बन जाती है। तो मेरे ख्याल से ये जो बहुत सा प्रोपोगंडा चलता है कि जी वो मीडिया रिपोर्टिंग में हरेसमेंट बहुत ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से मीडिया रिपोर्टिंग में ही हरेसमेंट सबसे कम है। हाँ, आप इन हाउस कह सकते हैं, बहुत से मामलात होते होंगे, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन एज अ रिपोर्टर जो हमारे साथ काम किया है मीडिया बॉक्सेस में, लाहौर का भी मैंने शेयर किया, कराची का भी किया, मुल्तान का भी किया, रावलपिंडी का भी किया, तो मुझे ऐसा कहीं भी 1% चीज़ भी नहीं नज़र आई कि कोई रिपोर्टर उठ के किसी रिपोर्टर को हरास कर रहा है। अगर गुफ्तगू हो रही है फ़ोन के ऊपर, खबर लेने के लिए हो रही है, ग्रुप्स हैं खबर लेने के लिए, ग्रुप्स में हैं, खबर आती है, हमारे बहुत से ग्रुप्स हैं जिसमें खवातीन ऐड हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स ऐड हैं, तो हमने नहीं देखा आज तक कि किसी ने कंप्लेन की हो कि यार ये मुझे हरेसमेंट कर रहे हैं, ये मुझे हरेस कर रहे हैं, क्योंकि हर सिटी की अपनी एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी है, तो उसमें भी आज तक रिपोर्ट नहीं आई कि किसी ने हरेस किया है, किसी ने इस तरह किया। मेरे ख्याल से काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं और आगे भी आप देखें कि एक मैच्योर जो है जर्नलिस्ट एक मैच्योर पर्सन होता है और उसको पता होता है कि अखलाकियात क्या है, क्योंकि वो एक रोल मॉडल होता है बहुत से लोगों के लिए जो वो, क्योंकि वो टीवी पे आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे मामलात सुनने में तो जरूर अच्छे लगते होंगे, लेकिन अभी तक होते या किसी से हमने नहीं सुना कि जी ये चीज़ें, हाँ ऑडियंस को बड़े अच्छे लगते होंगे कि जी अब मैंने अपनी बेटी को जी रिपोर्टिंग में नहीं भेजना क्योंकि इसमें हरेसमेंट होती है। ये आज की इस दुनिया में एक मैच्योर जो है वो दुनिया में एक जेन ज़ी के दौर में आप ये कह रहे हैं कि जी हरेसमेंट हो रही है, मेरा नहीं ख्याल। आपकी माशाल्लाह ख़वातीन को हर चीज़ पता है और वो बेहतर तरीके से डिफेंड कर लेती हैं अब अगर कोई उनको इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व करे तो।
1: बिल्कुल ठीक है, आपने इस पर हम मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। अभी वक्त हुआ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। हमने बात की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे, उनके मसाइल पर, वुमेन रिप्रेजेंटेशन पर। अब अगर हम बात करें कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त जर्नलिज्म की दुनिया में आ गए हैं और अब वो आके हर मैच के बाद अपना तबसरा दे रहे होते हैं, तो अगर आप एक हल्का सा कमेंट कर दें कि आपका उसके बारे में क्या ख्याल है।
1: बिल्कुल, आपने कहा कि खिलाड़ी आ गए हैं जो कि सोशल मीडिया पे बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया ही जो है वो फसाद की जड़ है। मैं इस चीज़ पे जो है वो राय रखता हूँ ये वाली कि सोशल मीडिया ही फसाद की जड़ है। वो इसलिए भी, शायद ये मेरे खिलाफ भी जाए कि आज की दौर में आप डिजिटल मीडिया के स्टूडेंट्स हो के तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैठ के और डिजिटल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं उसके खिलाफ। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप जब सोशल मीडिया का यूज़ गलत करेंगे ना तो बहुत नुकसान देगा, और हमारी 80% आवाम उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं बैठा हूँ, मैं टीवी पे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे जिम्मेदारी है कि मैंने ये अल्फाज कहना है, ये नहीं कहना, ये मेरे टीवी पे जाएगा, ये मेरी आवाम को जाना चाहिए और ये नहीं जाना चाहिए। क्या मैं इस खिलाड़ी पे तबसरा कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता? लेकिन सोशल मीडिया पे बैठ के मैं जब तक तनकीद नहीं करूंगा, जब तक मैं गालम गलोच नहीं करूंगा, मुझे व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। हमारे बहुत से साबिक क्रिकेटर्स जो हैं वो इस रुझान की तरफ आ चुके हैं कि वो सोशल मीडिया चैनल्स बनाते हैं। चैनल्स बनाने के बाद वो बकायदा उसके ऊपर जो है वो तबसरे करते हैं कि पाकिस्तान की इस खिलाड़ी को ये है, इस खिलाड़ी को ये, और गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये लोग चैनल पे बैठे हों तो शायद ये लोग उस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें। हमने बहुत से खिलाड़ी ऐसे देखे हैं जो टीवी पे बैठ के तो बड़ी जिम्मेदाराना बात करते हैं, जब वो सोशल मीडिया पे जाते हैं तो वो जिम्मेदाराना बात उनकी खत्म हो जाती है, वो व्यूअरशिप के लिए बात करने लग पड़ते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो टीवी पे बैठ के तो बड़े महज़ब तरीके से खिलाड़ियों को बैक भी कर रहे होते हैं, तनकीद भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनके YouTube चैनल पे जाएंगे तो उनके थंबनेल से आपको ये तासुर जा रहा होता है कि इसने तो इस वीडियो में उड़ा दिया इस खिलाड़ी को। तो हमारा जो सोशल मीडिया है उसका हमारे खिलाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब अगर एक खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और उसके ऊपर बकायदा ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो ट्रेंड्स हम जैसे सहाफ़ियों को मिला के ही चलाए जाते हैं, वो सहाफ़ी ही ट्रेंड्स चलाते हैं क्योंकि उनकी ट्विटर पे रीच होती है, तो वो सहाफ़ी बैठ के जो है वो ट्विटर ट्रेंड सेट करते हैं और अपनी मर्जी के खिलाड़ी को मॉडिफाई कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, आपको हर खिलाड़ी की बात करनी चाहिए। तो जब सोशल मीडिया अफेक्ट कर रहा है हमारे खिलाड़ियों को, इवन कि हमारी टीम सिलेक्शंस को भी इफेक्ट करता है। हम अब बहुत सी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छुपाता है, वो नहीं बताता मीडिया को कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाएंगी, खिलाड़ियों पे गलत चीज़ का तासुर जाएगा। इसकी लेटेस्ट जो अभी मिसाल वो ये है कि एक वाकया हुआ है इंग्लैंड में, और उस वाक्य के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तबसरा नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वाक्य पे ये कहा कि हम उस वाक्य को लीगल असिस्टेंस देंगे अपने प्लेयर को, उसके बाद वो जो भी अदालत का फैसला होगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शो की है और अपने सोशल मीडिया को तमाशा बनाने नहीं दिया। सोशल मीडिया पे जब तमाशा चीज का बनता है तो वो खिलाड़ी के लिए भी नुकसानदेह होता है और एक इंस्टीट्यूट के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का एक रोल तो है हमारी लाइफ के ऊपर, उसको अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें और पॉजिटिव ही रखें तो ये बहुत जो है वो इफेक्टिव भी होगा और हमारे सोशल मीडिया यूजर्स के लिए भी फायदेमंद होगा कि वो पॉजिटिव तरीके से उसको यूज करेंगे। क्योंकि व्यूअरशिप जो है, हमने शायद अनफॉर्चुनेटली अपनी व्यूअरशिप को ये आदत डाल दी है कि हम तनकीद करेंगे तो आप हमें देखें, अगर हम तनकीद नहीं कर रहे तो आप हमें ना देखें। हमें क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट देना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ कंटेंट नहीं देना चाहिए।
0: और इसी में फैन पेजेस को कैसे देखते हैं आप?
1: बिल्कुल, आपने फैन पेजेस की भी बात की है। अब तो फैन पेजेस जो हैं वो बहुत से फैंस बना लेते हैं और वो जुनून की हद तक होते हैं। तो वो बहुत से लोग जो होते हैं, वो क्रिकेटर्स जो होते हैं ना, वो खुद भी फीड कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं उन फैन पेजेस को, उनके भाई बहनों दोस्तों ने बनाए होते हैं, फैमिली ने बनाए होते हैं, तो वो उनको फीड भी कर रहे होते हैं। जो खिलाड़ी खुद नहीं ना बात करना चाहता, वो उनका फैन पेज बात कर देता है और उसके बाद वो बात जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बन जाती है और वो बात निकलते निकलते पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। तो मेरे ख्याल से फैन पेजेस को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और फैन पेजेस को क्रिकेटिंग नॉलेज पे बात करनी चाहिए, क्रिकेट सेंस पे बात करनी चाहिए, ना कि क्रिकेटर्स चाम के ऊपर बात करनी चाहिए। तो जब तक आप क्रिकेटर्स के चाम में मुब्तला होंगे तो ना आप सहाफ़ी हैं, ना आप कोई एंकर पर्सन हैं, ना आप कोई ऐसी सोर्स हैं जिसपे के ऊपर ट्रस्ट किया जाए क्योंकि आप हमेशा बात करेंगे तो उस खिलाड़ी की फेवर में बात करेंगे, आप उसके फैन बन के बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक सहाफी न्यूट्रल होता है और उसको न्यूट्रल ही रहना चाहिए, ना कि किसी प्लेयर की साइड लेनी चाहिए, किसी प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए, जो देख रहा है उसके ऊपर बात करते हैं।
0: हमने बात तो की थी प्रॉब्लम्स के बारे में, अगर मैं आपसे लास्ट पे कमेंट लेना चाहूँ कि आप क्या देखते हैं कि इसका हल क्या है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का और जो प्रॉब्लम्स हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में।
1: बिल्कुल, वुमेन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और इसके लिए आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा स्पोर्ट्स में, जो कि हमारी बहुत सी खवातीन में स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट नहीं है, प्लेयर्स का चार्म जरूर मौजूद है। जब तक आप स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट नहीं लेंगे आप उस फील्ड में नहीं आ सकते। ये इसका एक प्रॉपर, आप देखें कि प्रॉपर सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि पाकिस्तान में समझा जाता है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत कम लोग जाते हैं। खैर, अब तो जर्नलिज्म भी बहुत से लोग अवॉइड कर रहे हैं जर्नलिज्म में जाने के भी, और बहुत से लोग इस सब्जेक्ट को चूज ही नहीं करते कि नहीं जर्नलिज्म तो एक लिमिटेड सोर्स है। तो मेरे ख्याल से जर्नलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, जर्नलिज्म में जाना चाहिए और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में खास तौर पे जाना चाहिए। ये मेरी नज़र में ये सबसे सेफ बीट है खवातीन के लिए, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और वैसे ही एक एनर्जेटिक है। तो हमें स्पोर्ट्स की तरफ इन खवातीन को लाना चाहिए और खवातीन को स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में फोकस करवाना चाहिए, ना कि दीगर बीट्स में जाएं या इन हाउस काम करें। आएं, आके काम करें। बहुत सी नौजवान खवातीन हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाह रही हैं और वो काम भी कर रही हैं और हमसे शायद अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए और उनका माइंड जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ होना चाहिए। हमारी एक अनफॉर्चुनेटली बात ये भी है कि हम जब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जाते हैं खवातीन खासकर, तो उनके माइंड सेट में आ जाता है कि मैं इस प्लेयर की मीडिया मैनेजर लग जाऊँ, इस टीम की मीडिया मैनेजर लग जाऊँ। तो वो मीडिया मैनेजरशिप से निकल के स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनना चाहिए, ना कि आपको मीडिया मैनेजर और उस प्लेयर की प्रोफाइलिंग में लग जाना चाहिए, आपको उस फील्ड के साथ खेलना चाहिए।
0: थैंक यू सो मच वलीद, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया प्रॉब्लम्स को भी और उनके हल को भी, एंड यू आर डूइंग टू गुड। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ नए मौजू पर गुफ्तगू होगी। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। खुदा हाफिज।

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीनें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इत्तला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आंखों के मसाइल से दो चार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आंखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आंखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आंखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आंखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन ग़िज़ा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: रे।
1: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर ना आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
2: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम सामईन, मैं हूं आपकी मेज़बान आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 यूसीपी की दुनिया से। सामईन, आज हम बात करने जा रहे हैं स्मार्ट ग्रिड्स और तवानाई के मौसर इंतजाम पर। एक ऐसा मौजू जो ना सिर्फ आलमी सतह पे अहमियत अख्तियार कर चुका है बल्कि पाकिस्तान के तवानाई के बहरान के हल के लिए भी बहुत जरूरी है। दुनिया भर में AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, खुदकार निजाम तवानाई की बचत, मौसर तकसीम और सार्फीन की सहूलत के लिए इनकलाबी किरदार अदा कर रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड एक जदीद निजाम है जो बिजली की फ्राहमी को महफूज, कफायती और माहौल दोस्त बनाने में मददगार साबित होता है। आज इस अहम मौजू पर हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद इतनान अजीज, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप तवानाई के इंतजाम, स्मार्ट ग्रिड्स और AI बेस्ड पावर सिस्टम्स के शोबों में तहकीक और तदरीस का वसी तजर्बा रखते हैं और इस मौजू पे कई रिसर्च आर्टिकल्स शाया कर चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि स्मार्ट ग्रिड्स क्या है, ये कैसे काम करते हैं, AI और IoT का इसमें क्या किरदार है और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में किस तरह तवानाई के मसाइल का पायदार हल बन सकती है। तो आइए इस मालूमाती गुफ्तगु का आगाज करते हैं। खुशामदीद सर,
3: बहुत शुक्रिया जी मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए।
2: सर, इस दिलचस्प मौजू पे गुफ्तगु शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें बताइए कि तवानाई के मौसर इंतजाम और पायदार तरक्की की आज के दौर में क्या अहमियत है।
3: देखें जी, जितनी प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद होती हैं कंज्यूमर्स के लिए, उनकी कॉस्ट हमेशा डिसाइड हुआ करती है उनकी डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से। इसी तरह अब तवानाई का जो मौसर इंतजाम और पायदार तरक्की की अहमियत है वो आज के दौर में बहुत बढ़ चुकी है। जब हम दुनिया की तवानाई की खपत पर नजर डालते हैं तो अंदाजा होता है कि ये हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ रही है। अगर हम 1990 के अदाद व शुमार का मुवाजना 2025 से करें तो दुनिया में बिजली की खपत तकरीबन दुगनी हो चुकी है। ये इजाफा सिर्फ आबादी की बढ़ोतरी की वजह से नहीं बल्कि सनती तरक्की, टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त और रोज़मर्रा सहूलतों में इजाफे की बदौलत भी हुआ है। मुस्तकबिल की बात की जाए तो 2040 तक का अंदाज़ा है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तवानाई की ज़रूरत 2015 के मुकाबले में 2000 गुना बढ़ चुकी होगी। ये तो सिर्फ एक शोबा है जिससे ये वाज़े होता है कि तवानाई की तलब आने वाले वक्तों में कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली
2: है। ऐसा ही है।
3: जहाँ तक तवानाई की पैदावार का ताल्लुक है, आज भी दुनिया में सिर्फ 9% बिजली काबिल तजदीद ज़राए से पैदा हो रही है जबकि बाकी तवानाई कोयला, तेल, गैस, न्यूक्लियर और हाइड्रो ज़राए से हासिल की जाती है। इन ज़राए का सबसे बड़ा मसला है कि ये महदूद मकदार में दस्तियाब हैं, तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और इनका इस्तेमाल माहौल पर इंतहाई मनफी असर डाल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर जहरीली गैसों के अखराज से ग्लोबल वार्मिंग, मौसम की शिद्दत में इजाफा, समंदर की सतह बुलंद होना और दीगर माहौलियाती मसाइल
2: पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, इस प्रॉब्लम को।
3: अब अगर हम तवानाई के इस्तेमाल के शोबों पर बात करें तो दुनिया में तवानाई का इस्तेमाल 5 अहम शोबों में होता है जिनमें सनत, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल सरगर्मियां, ज़रात और रिहायशी शोबा शामिल है। रिहायशी शोबे के अलावा बाकी तमाम जगहों पर तवानाई का इस्तेमाल किसी भी वक्त के लिए मौखर नहीं किया जा सकता, उन्हें मुसलसल तवानाई दरकार होती है। जिसकी बहुत आम सी मिसाल ये है कि किसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर अब किसी पेशेंट को ऑपरेट किया जा रहा है तो उसकी जो सपोर्ट डिवाइसेस हैं उनको बंद नहीं किया जा सकता किसी
2: 24/7 वहाँ पे जरूरत है।
3: लेकिन रिहायशी शोबा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें तवानाई की खपत को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म किया जा सकता है और इस शोबे में तकरीबन 25% तवानाई इस्तेमाल होती है। अगर लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो बिजली की तलब में तवाज़ुन पैदा किया जा सकता है। मसलन हम ऐसी आदतें अपना सकते हैं कि गैर ज़रूरी वक्तों में بھاری برقی آلات نہ چلائیں، توانائی بچانے والے آلات کا استعمال کریں اور روزمرہ زندگی میں توانائی کے ضیاع کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ توانائی کے مؤثر انتظام کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس کی بچت کی جائے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ توانائی کا ایسا نظام قائم کیا جائے جو آنے والے وقت میں پائیدار ہو، کلین انرجی ہو اور سب کے لیے دستیاب ہو۔ قابل تجدید توانائی کے ذرائع جیسے سورج، ہوا اور بایو ماس کی طرف جانا اس کا اہم حصہ ہے۔ حکومت اور اداروں کو چاہیے کہ سمت میں تحقیق، منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کریں اور عوام کو اس کے بارے میں شعور دیں۔ یہ سب سوالات ہمیں ایک بڑی تصویر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ کیا ہم توانائی کے مؤثر استعمال کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے منصوبے موجود ہیں جو بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کر سکیں اور ماحولیاتی تحفظ کو بھی یقینی بنائیں؟ کیا ہم اپنے گھروں، صنعتوں اور معاشرے میں توانائی کا ضیاع روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں؟ کیا ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور پائیدار توانائی نظام چھوڑنے کی تیاری کر چکے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر مزید غور کرنے اور جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بات صرف آج کی نہیں، آنے والے کل کی بھی ہے۔
2: بالکل سر، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ ہم سے زیادہ پرابلمس کو فیس کرنا پڑے گا اگر ہم نے آج اس کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہ کیا تو۔ اچھا سر، اسمارٹ گرڈ پہ آپ آج بات کر رہے ہیں، تو ہم نے گرڈ کا ورڈ تو بہت دفعہ سنا ہوا ہے، یہ اسمارٹ گرڈ کیا ہے اور یہ ہمارے جو روایتی گرڈ ہے اس سے کس طرح مختلف ہے؟
3: ایکچولی جی، جو کرنٹ اس وقت ٹائم چل رہا ہے اس میں توانائی کی جو ضروریات ہیں وہ تو بڑھ رہی ہیں، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے اس کو بھی جدید اور مؤثر بنانا وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ اسمارٹ گریڈ اسی ضرورت کا جواب ہے۔ اسمارٹ گریڈ ایک جدید ڈیجیٹل اور خودکار بجلی کا نظام ہے جو مصنوعی ذہانت، انٹرنیٹ آف تھنگس، سینسرس اور ڈیٹا انالیٹکس کی مدد سے نہ صرف بجلی کی پیداوار اور ترسیل کو بہتر بناتا ہے بلکہ طلب اور رسد کے درمیان توازن بھی برقرار رکھتا ہے۔ اب اگر ہم روایتی گریڈ کی بات کریں تو وہ ایک پرانا نظام ہے جس میں بجلی کی ترسیل یک طرفہ ہوتی ہے، یعنی بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ سے صارف تک پہنچتی ہے اور اس میں صارف کی طرف سے کوئی معلومات واپس نہیں جاتی۔ اگر کہیں لائن میں خرابی ہو جائے یا فالٹ آ جائے تو اسے تلاش کرنے اور درست کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسمارٹ گرڈ میں دو طرفہ کمیونیکیشن موجود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف بجلی صارفین تک پہنچتی ہے بلکہ صارفین کی جانب سے ڈیٹا واپس بھی جاتا ہے، جس سے سسٹم کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کہاں کتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے، کہاں زیادہ لوڈ ہے، کہاں کسی خرابی کا خدشہ ہے۔ اس طرح خرابیوں کا پتہ لگانا خودکار اور فوری ہو جاتا ہے، جس سے نظام زیادہ محفوظ، پائیدار اور مؤثر بن جاتا ہے۔

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्मार्ट ग्रिड्स और तवानाई के मौसर इंतजाम पे। इसी सिलसिले में सर से हम मजीद बातचीत का आगाज करते हैं। सर, अभी आपने अपने जवाब में हमें बताया कि AI और IoT इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सर, हमने वैसे तो बहुत सुना है AI और IoT के बारे में, लेकिन बिजली की तकसीम को बेहतर बनाने में ये किस तरह इस्तेमाल हो रही है?
2: जी, बिजली की तकसीम के रिवायती निज़ाम को जदीद बनाने में दो अहम टेक्नोलॉजीज, जिनका अभी आपने नाम लिया AI और IoT, इनका बहुत नुमाया किरदार है। AI और IoT दोनों मिलके एक ऐसा कम्बिनेशन फॉर्म करती हैं जो स्मार्ट ग्रिड सिस्टम्स को बहुत मौसर बनाती हैं। अगर मैं इनको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो AI का बड़ा किरदार यह है कि ये पूरे सिस्टम में बिजली के इस्तेमाल का डाटा इकट्ठा करती है, इस डाटा को एनालाइज करती है और फ्यूचर की जो तलब की पेशगोई है वो आपको प्रोवाइड कर देती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी इलाके में शाम के वक्त बिजली की खपत ज़्यादा होती है तो AI बाकी दिनों के लिए भी वैसे ही प्रिडिक्शन देता है, लेकिन अगर मौसम में कोई तब्दीली आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश हो जाती है तो बिजली की तलब जो है उसमें कमी हो जाती है, उस तरह की प्रेडिक्शंस को भी ये अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है। दूसरी अहम चीज़ AI ये करता है कि अगर कहीं ग्रिड में ख़राबी हो जाए तो ये सिस्टम खुदकार तौर पर ख़राबी को पहचानता है, अलर्ट देता है, और बाज़ औक़ात ऐसे खुदकार सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो फौरी तौर पर मुरम्मत का अमल भी शुरू कर देते हैं।
1: ज़बरदस्त।
2: या फिर बिजली को दूसरे रास्तों से सप्लाई करने का बंदोबस्त करते हैं ताकि बिजली की फरहमी मुतासर ना हो। अब अगर हम बात करें IoT की तरफ, तो IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ऐसी डिवाइसेस शामिल होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। स्मार्ट ग्रिड में सबसे अहम IoT डिवाइस है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर सारिफ की असल बिजली की खपत का डाटा लम्हा बलम्हा रिकॉर्ड करते हुए इसको ग्रिड को ब्रॉडकास्ट कर देता है। इससे ग्रिड को पता चलता है कि कहाँ कितनी बिजली की ज़रूरत है। दूसरी अहम चीज़ खुदकार पावर कंट्रोल है जो IoT की मदद से काम करता है। जब बिजली की तलब अचानक बढ़ जाए तो ये सिस्टम खुदकार तौर पर इजाफी बिजली मुहैया करता है, और अगर कहीं तलब कम हो जाए तो सप्लाई को कम भी कर देता है ताकि तवानाई का ज़िया ना हो। इस तरह बिजली की तकसीम बहुत मुतवाजन तरीके से की जाती है।
1: अच्छा सर, आपने ज़िक्र किया स्मार्ट होम्स का, तो स्मार्ट होम्स में सर तवानाई की बचत के क्या तरीके हैं?
2: स्मार्ट होम बेसिकली एक ऐसा घर है जिसमें मुख्तलिफ आलात जैसे लाइट्स, पंखे, AC, हीटर, दरवाज़े और सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हैं या दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, हम लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट ग्रिड्स और तवानाई के मौसर इंतजाम पे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है अपने इस टॉपिक के ऊपर, तो पाकिस्तान में बिजली की सूरत हाल आपके ख्याल में कैसी है?
2: पाकिस्तान में जी बिजली के मसाइल कई दहाइयों से जारी हैं और आज भी हमारे मुल्क की मईशत और अवामी ज़िंदगी इनसे शदीद मुतासर है। सबसे पहला मसला है लाइन लॉसेस का और बिजली चोरी का। हमारा मुल्क उन चंद ममालिक में शामिल है जहां बिजली की तरसील के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान होता है
1: जी।
2: कभी पुरानी लाइनों की वजह से तो कभी जानबूझकर की जाने वाली चोरी की वजह से। इसका नुकसान बिला आखिर आम सारिफ को होता है महंगे बिलों की सूरत में।
1: ऐसे ही है।
2: दूसरा बड़ा मसला है लोड शेडिंग और बिजली की तलब और असद में फ़र्क। गर्मियों में जब बिजली की मांग बढ़ जाती है तो हमारे सिस्टम के पास इतनी पैदावारी सलाहियत नहीं होती कि वो पूरी कर सके। नतीजतन शहरों में तो कभी कभी लोड शेडिंग हो जाती है मगर देही इलाकों में कई कई घंटे बिजली गायब रहती है। तीसरा अहम मसला महंगी बिजली और गैर मौसर तकसीम है। हमें ना सिर्फ बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है बल्कि इसकी तरसील भी दुरुस्त तरीके से नहीं हो पाती। जिन इलाकों में ज़रूरत कम है वहाँ भी बिजली ज़ाया हो रही है और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ कमी का सामना है। अब सवाल यह है कि क्या इन मसाइल का कोई मुस्तकिल हल मौजूद है? तो वो जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे हैं कि स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी इनका एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कि इसमें AI बेस्ड डिमांड रिस्पांस जो है वो क्रिएट किया जाता है। स्मार्ट ग्रिड सिस्टम में मस्नूई जहानत की मदद से ये देखा जा सकता है कि कौन से इलाके में कितनी तलब है और कहाँ लोड कम या ज़्यादा है। इस तरह लोड मैनेजमेंट खुद बेहतर हो जाएगी और बिजली का ज़्याबी कम हो जाएगा। दूसरा हल ये है कि बिजली चोरी की रोकथाम की जाए। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब से न सिर्फ हर घर का दुरुस्त डाटा मैसर होगा बल्कि गैर कानूनी कनेक्शन फौरी तौर पर पकड़े जा सकेंगे। ये निज़ाम हुकूमत के लिए भी आसान होगा और बिजली फराहम करने वाले इदारों के लिए भी
1: जी।
2: तीसरा हल काबिल तजदीद तवानाई का इंजमाम है। आज दुनिया में सोलर और विंड एनर्जी तेजी से बढ़ रही है। स्मार्ट ग्रिड की बदौलत हम मकामी तौर पर पैदा होने वाली शमसी या हवा की बिजली को कौमी ग्रिड में आसानी से शामिल कर सकते हैं। इससे बिजली की पैदावारी लागत कम होगी, माहौलियाती आलूदगी भी कम होगी और तवानाई का निज़ाम ज़्यादा मजबूत बनेगा
1: जी।
2: ये वक्त है कि हम रिवायती तरीकों से हटकर जदीद टेक्नोलॉजी अपनाएं। पाकिस्तान में अगर स्मार्ट ग्रिड सिस्टम को सही तरीके से नाफिज किया जाए तो न सिर्फ लाइन लॉसेस कम हो सकते हैं बल्कि लोड शेडिंग में भी नुमाया कमी आ सकती है। और सबसे अहम बात, आम सार्फीन के लिए बिजली सस्ती और मुसलसल दस्तियाब हो सकती है।
1: सर, आपने इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क किया है तवानाई से रिलेटेड और स्मार्ट ग्रिड्स के हवाले से, तो सर हमारे सुनने वालों को बताएं कि आपने किन पॉइंट्स पे अभी तक काम किया
2: है? जी, मेरी तहकीक जो है उसका बेसिक जो टाइटल था दैट वाज ऑप्टिमल पावर शेड्यूलिंग इन स्मार्ट ग्रिड्स एट डिमांड साइट। उसका कुछ जो अहम पहलू हैं उनका मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ कि बेसिक जो गोल था वो ये था कि घरेलू और कम्युनिटी सतह पर बिजली के मौसर इस्तेमाल के लिए ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो लागत को कम करे, बिजली के निज़ाम को मुतवाजन रखे और पीक लोड के मसाइल को हल कर सके। पाकिस्तान में इस हवाले से जो मौजूदा सूरतयाल है वो कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान में बिजली के लिए TOU टैरिफ का निज़ाम राइज है जिसमें सिर्फ दो निर्ख होते हैं, एक पीक आवर्स के लिए और दूसरा ऑफ पीक आवर्स के लिए। यानी दिन के चंद घंटों में बिजली महंगी होती है और बाकी वक्त निस्बतन सस्ती। लेकिन दुनिया भर में जदीद स्मार्ट ग्रिड सिस्टम्स में रियल टाइम प्राइसिंग का निज़ाम अपनाया जा चुका है जिसमें पूरे दिन के 24 घंटे के लिए मुख्तलिफ रेट होते हैं। हर घंटे की कीमत अलग अलग तय की जाती है और ये तलब और रसद के मुताबिक बदलती रहती है। इसकी बदौलत सार्फीन अपने आलात को इन औकात में चला सकते हैं जब बिजली सस्ती हो और इससे पूरे सिस्टम में लोड मुतवाजन रहता है। बेसिक अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं जिनको मैंने यूटिलाइज किया, वो कम्युनिटी बेस्ड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। मेरी तहकीक का पहला और अहम तसव्वुर ये है कि इंफरादी घरों की बजाय कम्युनिटीज़ को एक यूनिट के तौर पे लिया जाए
1: जी।
2: यानी एक इलाके के तमाम घरों का लोड इज्तमाई तौर पर मुनज़्ज़म किया जाए। इससे मकामी सतह पर तवानाई का इश्तराक भी मुमकिन हो सकता है और लाइन लॉसेस भी कम हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वक्त पर मबनी आला जात की ग्रुपबंदी की जाए जिसको हमने टाइम बेस्ड डिवाइस क्लस्टरिंग का नाम दिया कि इस मॉडल में ऐसे तमाम बरकी आलात को शनाख्त किया जाए जिनका इस्तेमाल मुतवक्के तौर पर एक ही वक्त में होना है। इन आलात को अलग अलग क्लस्टर्स में तकसीम किया गया और क्लस्टर्स को बेहतरीन वक्त पर चलाने का फैसला एक एल्गोरिदम के ज़रिए किया गया। उस एल्गोरिदम का नाम PSO है, जो एब्रीविएशन है पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन की। ये एक जदीद तकनीक है जिसमें मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को पार्टिकल्स कहा जाता है और ये पार्टिकल्स मुसलसल बेहतर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे परिंदों का गोल एक दूसरे की रहनुमाई से मंजिल की तरफ प्रवास करता है, ये तरीका बेहतरीन वक्त और तरतीब के इंतखाब में मदद देता है
1: जी।
2: अगला नुक्ता इनक्लाइंट ब्लॉक रेट है, जिसमें हम सार्फीन को इजाफी खपत पर इजाफी निर्ख चार्ज करते हैं। इस IBR को भी हमने अपनी रिसर्च में शामिल किया, जिसका मकसद ये था कि अगर कोई सारिफ या कम्युनिटी अपनी हद से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करे तो इस पर जुर्माना लागू किया जाए, यानी बिजली का निर्ख खुद ब खुद बढ़ जाए। इससे लोग मोहतात रहते हैं और पीक लोड पैदा होने का ख़तरा कम हो जाता है। और इसकी एक वजह यह भी है कि अगर आप पाकिस्तान में भी कोई एक घंटा ऐसा रख दें जिसमें बिजली का निर्ख बाकी औकात के मुकाबले में 10% रह जाए, तो उस वक्त अगर वैसे बिजली कम भी इस्तेमाल होती थी तो क्योंकि रेट वहाँ पे कम कर दिया गया है तो लोग अपने आलात को उन औकात में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं।
1: सर, उस टाइम पे जो लोड है वो ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा फिर?
2: वो यही होता है कि जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइस कम करेंगे, गो के वहाँ पे पहले उसकी खपत कम थी, लेकिन डिवाइसेस जब उस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी तो पीक एक जगह से हट के दूसरी जगह क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए फिर हम वहाँ पे इनक्लाइंट ब्लॉक रेट लगा देते हैं, सो दैट के एक थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा कोई बिजली इस्तेमाल करे तो फिर उसको पेनल्टी चार्ज होती है, वो फिर उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है। फिर रियल टाइम प्राइसिंग जो है, इसको पाकिस्तान में भी यूज़ किया जा सकता है कि जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ TOU चल रहा है, जो दो कीमतों का निज़ाम है। तो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग की बेस पे आप पूरे दिन में जहाँ जहाँ तलब और रसद में फ़र्क आ रहा है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमने अपनी रिसर्च में रियल टाइम प्राइसिंग को इनकॉर्पोरेट किया और फिर इसके साथ हमने एक ट्वीक जो उसमें किया वो ये था कि हमने रियल टाइम प्राइसिंग को भी सर्कुलर शिफ्ट दे दी। अगर तमाम सार्फीन कम कीमत वाले औकात में अपने बरकी आलात इस्तेमाल करने लगें तो भी पीक लोड क्रिएट हो सकता है, जिससे अभी हमने पहले बात की। इसका हल मैंने अपनी तहकीक में CSRTP की सूरत में पेश किया। इस मॉडल में हर कम्युनिटी को थोड़े से मुख्तलिफ रेट्स दिए जाते हैं कि जैसा यहाँ जोहर टाउन है, यहाँ के लिए कुछ और रेट होगा, करीबी वाकटा टाउन है उसको एक अलग कम्युनिटी तसव्वुर किया जाए और उसमें जो पीक आवर्स हैं वो थोड़े से शिफ्ट कर दिए जाएँ, ताकि तमाम कम्युनिटीज़ एक ही वक्त में अपने आलात ना चलाएं बल्कि मुख्तलिफ औकात में तकसीम हो जाए,
1: लोड बैलेंस हो जाए।
2: जी, लोड बैलेंस हो जाएगा उससे। इससे पूरे सिस्टम पर जो इफ़ेक्ट है वो यही आता है कि लोड बैलेंस हो जाता है और तरसील जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है। इन तमाम पॉइंट्स को यूज़ करते हुए जब हमने सिमुलेट किया एक डमी बिजली के लोड के ऊपर, तो जो लागत थी उसमें तकरीबन 45% तक कमी हुई और पीक टू एवरेज रेशो तकरीबन 38% तक रिड्यूस हुई। और इसके अलावा जो बिजली की खपत का पैटर्न है वो आम तौर पर तो बहुत गैर हमवार होता है, उसमें ऊंच नीच बहुत ज़्यादा होती है, हमारी एल्गोरिदम के इस्तेमाल से उसकी वेरिएशंस जो हैं वो भी रिड्यूस हो गई थी। मेरी तहकीक से ये बात वाजे हुई कि अगर हम कम्युनिटी बेस्ड पावर शेड्यूलिंग के ऊपर काम करें, इसके साथ PSO एल्गोरिदम को अप्लाई करें और IBR और CSRTP जैसे जदीद तरीके अपनाएं, तो ना सिर्फ बिजली का ज़्यार रोका जा सकता है बल्कि बिजली की तकसीम, लागत में कमी और कौमी ग्रिड के इस्तेहकाम में भी नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। मेरी ख्वाहिश है कि ये सिस्टम पाकिस्तान की तवानाई पॉलिसी में भी शामिल हो, ताकि हमारा मुल्क भी दुनिया के तरक्की याफ्ता स्मार्ट ग्रिड सिस्टम।
1: सर, ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश नहीं है, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि हम अपनी इस तरह की वीकनेसेस को ओवरकम करें और तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ के साथ हम उसकी लिस्ट में हम शामिल हो जाएं।
2: जी बिल्कुल।
1: अच्छा सर, हमारे प्रोग्राम का टाइम चूंकि लिमिटेड है, हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारे सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहें।
2: जी, अगर इसको मैं समराइज़ करूं तो यूं ही किया जा सकता है कि तवानाई की खपत हमने जैसा स्टार्ट में बात की कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी बड़ी वजूहात जो हैं वो आबादी में इजाफा, सनती तरक्की और रोज़मर्रा सहूलतों का बढ़ना है। रिवायती तवानाई के ज़रिए महदूद हैं और माहौलियाती मसाइल का सबब बन रहे हैं। मुस्तकबिल में तवानाई की तलब मज़ीद बढ़ेगी, जिसके लिए पायदार काबिल तजदीद ज़राई की तरफ जाना नागुज़ीर है। तवानाई के मौसर इस्तेमाल में रिहायशी शोबा अहम किरदार अदा कर सकता है, जहाँ बिजली की बचत से मजमुई तलब में कमी लाई जा सकती है। तवानाई के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाई जा रही है, जो AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से बिजली की तरसील और तकसीम का खुदकार, मौसर और दो तरफ़ा रबते वाला निज़ाम बनाती है। यूरोप में और चाइना में स्मार्ट ग्रिड के कामयाब मॉडल्स और प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, جن سے توانائی کی بچت، خرابیوں کی فوری شناخت اور قابل تجدید ذرائع کا انضمام ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ ہوم ٹیکنالوجی جیسے سمارٹ تھرموسٹیٹس، ایل ای ڈی لائٹس اور انرجی ایفیشنٹ ڈیوائسز بھی توانائی کی بچت میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ مجموعی طور پر ہمیں توانائی کے مؤثر انتظام، پائیدار نظام کی تشکیل اور ماحول کے تحفظ کے لیے اجتماعی طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے بھی ایک محفوظ اور صاف توانائی کا مستقبل یقینی بنایا جا سکے۔
1: ڈاکٹر محمد عدنان صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ جی سامعین، آپ نے سنا کہ آج کی گفتگو بہت انفارمیٹیو رہی۔ ہم نے جانا کہ سمارٹ گرڈ صرف ایک جدید ٹیکنالوجی نہیں بلکہ توانائی کے مسائل کا دیرپا اور مؤثر حل ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اے آئی اور انٹرنیٹ آف تھنگز کس طرح بجلی کی بہتر تقسیم، توانائی کی بچت اور ماحول کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے نہایت سادہ اور مؤثر انداز میں سمارٹ گرڈز، مائکرو گرڈز اور سمارٹ ہومز کے فوائد واضح کیے اور اپنی ریسرچ کے اہم پہلو ہمارے سامنے رکھے، جو یقیناً قابل قدر ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جلد یہ جدید ٹیکنالوجیز رائج ہوں، تاکہ نہ صرف توانائی کا بحران کم ہو بلکہ صارفین کو سستی اور مستحکم بجلی کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ اجازت دیجیے آپ کی میزبان آمنہ محمود کو۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، توانائی کی بچت کیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीपी के दुनिया, और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सुमेर सही अपने सभी सुनने वालों को, अपने सभी चाहने वालों को और अपनी प्यारे से सामीन को तहे दिल से करती हूँ जनाब खुश आमदेद। जी आयानू, इस शो में हम बात करते हैं मौसीकी की, हम सुनते हैं मौसीकी, हम सुनते हैं ऐसी मौसीकी जो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, लेकिन पता है क्या, कुछ चीज़ें हमेशा याद रखने के लिए होती हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम आपकी यादों को थोड़ा सा, आप यूँ कह लीजिए कि आपकी यादों को थोड़ा रोशन करते हैं, एक नई बुनियाद देते हैं, एक तसलसल बनाते हैं, ताकि आप सुन सकें ऐसी मौसीकी और आपको पता चले कि हाँ ये भी है। क्योंकि बाज़ुकात जैसे कि ज़माने आगे बढ़ते जाते हैं और ज़माने की तेज़ रफ्तारी के साथ हम अपनी बहुत सी प्यारी चीज़ों को पीछे छोड़ाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त की धूल में ना ही मैली होती हैं ना ही उन पे गर्द आती है, वो हमेशा पहले दिन की तरह सुरखरू रहती हैं। तो जनाब आज भी हम ऐसी मौसीकी सुनेंगे, आज हम थोड़ी सी बात फैज़ अहमद फैज़ पे भी करेंगे, और साथ साथ जी बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे सामीन, आज हम बात करेंगे आपकी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी जो है वो ऐसे ऐसे हिचकोले लेती है। अब हिचकोले लेती है तो पता है क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें कभी इधर जा रही होती हैं, कभी उधर जा रही होती हैं, समझ नहीं आ रहा होता कि जनाब करें क्या, किस सिमत को जाए, कहाँ को है मंजिल, कहाँ को जा रहा है राही। चले जनाब ये बातें तो हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं कि फौरन से बेशतर अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं आज की पहली गजल से, और पहली गजल मेरे दिल के बहुत करीब है। जब आपको सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे दिल के करीब क्यों है। फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई ये खूबसूरत सी गजल आप सभी के नाम।

बोल के लब आजाद है तेरे जी बिल्कुल जनाब, हम सभी के लब आजाद है, हम कह सकते हैं जो हमारे दिल में है, हम बोल सकते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लबों को सिया नहीं गया, हमारे लबों पे ताले नहीं पड़े। यही तो बात थी फैज़ अहमद फैज़ की, उनमें यह खासियत थी कि उनकी शायरी एक वलवला जोश व खरोश लाती है, एंथुजियाज़म जिसे आप कहते हो एंथुजियाज़म, वो डिवेलप होता है। आप चाहते हो कि हाँ बस कुछ कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि बस जो दिल में है वो कर जाओ। अच्छा मुझे आप बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ जब आपने बोलना चाहा और आप बोल ना पाए? कितनी बार ऐसा हुआ जब आपने बोल लिया लेकिन आपको सुना ना गया? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके बोलने को यूँ कह लीजिए ज़रा सी भी इम्पोर्टेंस नहीं देगी, और आपको कहा गया कि नहीं तुम तो रहने ही दो? होता है ना? हाँ अक्सर होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। और पता है क्या, ये जो बार बार हमें इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है कि नहीं यू आर नॉट एबल टू डू दिस, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम ये कर सको, तुम ये कह सको, तो पता है वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि ताकि हम अपने अंदर के उस इंसान को जगाएं जिसे हमने कहीं सुला दिया होता है। सच्चाई कड़वी होती है, कड़वाहट होती है उसमें, और यही तो सच्चाई का शेवा है, यही तो है सच्चाई का हुस्न जनाब। इसलिए डरे मत, कह दीजिए जो दिल में है, कह दीजिए जो कहना चाहते हैं। अरे बोलिए, सब सुनेंगे, अगर नहीं सुनते तो अपनी बात में अपने

की महफिल में बैठे हो और आपको एक बात याद आ गई हो और वो अचानक से आपको कोई बात याद आई और आपने कहा है कि इस इंसान ने फला वक्त में फला बात कही थी। अच्छा, अब पता है मसला क्या? अब मसला ये है कि वो जो इंसान बैठा हुआ है उसने जो बात कही थी ना, वो इस तरह की बात है कि अगर आप उस महफिल में वो बात कह दोगे तो पहली बात उसकी दिल आजारी होगी और दूसरी बात उसकी इज्जत उस महफिल में घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो पता है क्या करें? आपको पता है? चले, मैं जानती हूँ कि आपको पता है, लेकिन फिर भी बताती चलो। इश्फाक अहमद साहब ने कहा कि तब अपनी उस बात को रोक लो और उस इंसान को बचा लो। अरे देखा, कहते हैं कि बातों से बातें निकलती हैं, यहाँ बातों से बात निकल आई ना। यानी किसी इंसान की इज्जत करना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। हम जितनी इज्जत दूसरों को देंगे और जितनी दूसरों की इज्जत का ख्याल रखेंगे, जितना दूसरों की इज्जत का ख्याल रखेंगे उतना ही हमारे हिस्से में वही चीज़ें आएंगी। कहते हैं ना, जो चीज़ें दोगे वही वापस आएंगी, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो हकारत हो। तो ऐसा कहते हैं कि अपनी अगली गज़ल सुनते हैं और इसके बाद वापस आके आपसे बहुत सी मज़ीद बातें करते हैं। ठीक है, हमारे साथ रहेगा।

सुरोड़तान सुरोड़तान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। जी बिल्कुल, फैसे मत फैस के हम ये खूबसूरत नज़्म सुन रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिलों को ये छू सी गई होगी, आपके तारों को, यानी आपके दिलों के तारों को, आपके दिलों के सुरों को ये बजा सी गई होगी। जी जनाब, यही तो बात है इसकी। अरे मरहम बन के आती है, ये कैसी दुनिया है, जादू की दुनिया, ले जाती है हमें कहाँ से कहाँ, पता ही नहीं चलता। अच्छा चलो एक बात करते हैं, मैं आपको कुछ बताती हूँ। कहते हैं एहसास एक दौलत है। एहसास क्या है? क्या एहसास करना सिर्फ महसूस करने का नाम है? क्या एहसास जो है वो हसास तबीयत का नाम है, हसासियत का नाम है? क्या है ये हसास होना, ये एहसास क्या है, फीलिंग्स क्या होती हैं, बताइए ना। चलिए मैं मुश्किल आसान किए देती हूँ। ये जो एहसास होता है ना, ये एक ऐसी दौलत है जो गैरों को अपना कर देती है। ये जो एहसास है ना, पता है ये क्या है? ये वो है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है। एहसास, अरे पता है एहसास क्या है? एहसास वो है जिससे हम किसी का दिल नहीं तोड़ते। एहसास वो है जब हम किसी को जानते भी नहीं होते, लेकिन हम उसकी मदद कर देते हैं। ये सब एहसास ही तो है। और अगर एहसास हो ना, तो बहुत से रिश्ते बन जाते हैं, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, मोहब्बतें आ जाती हैं, खुशियाँ आ जाती हैं, लोग आ जाते हैं, लोग अपने हो जाते हैं, अपने दिल के बहुत करीब। हमारा दिल जो है ना, एहसास का शुक्र गुजार है, या आप यूँ कह लीजिए दिल का सबसे हसीन साथी एहसास होता है, क्योंकि इनका ताल्लुक बहुत मजबूत होता है। हम सभी कहते हैं कि लाहौरी जो होते हैं, यानी जो लाहौर में रहने वाले होते हैं, वो बड़े दिल वाले होते हैं। तो हम लाहौरियों की यही तो बात है जनाब, कि हम बड़े दिल वाले होते हैं। इतने बड़े दिल वाले होते हैं कि हम इस छोटे से दिल में, जिसको हम बड़ा बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समेट लेते हैं। और हाँ, अगर आप उदास बैठे हैं कमरे के किसी कोने में, आप मुझे सुन रहे हैं, या किसी भी जरिए से आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर किसी ने आपके एहसास की कदर नहीं की, तो दिल मत हारिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है, बहुत हसी है, बहुत खुशगवार है, इसमें रानाइयाँ हैं। अरे क्या बात करते हैं, आप यूँ कह लीजिए कि इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जैसे हम कभी कभार जो है वो ज़िंदगी का बस एक फेस देख रहे होते हैं, एक लिंक देख रहे होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। हर बात में जैसे मैंने कहा था कि बात होती है, तो फैज़ अहमद फैज़ ने भी कहा था कि बात की अंदर की बात समझने के लिए ज़ात के अंदर की ज़ात से राब्ता होना ज़रूरी है। अच्छा, बात तो मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दी है, अब इसको समझाना भी पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते हैं कि पहले हम ग़ुलाम अली को सुन लेते हैं, और उनकी आवाज़ में ऐसी गज़ल
जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। आप सुनिए और लुत्फंदोज होइए। पहली बार रजीना अखियाँ ने तकिया, एह जया तकिया कि हाय मार सुटिया।

तो उस पे मर गया कैसे? अरे मेहती हसन की आवाज हो और ऐसे अल्फाज हो तो कहने को तो बनता है कि क्या ही बात है, कमाल है, लाजवाब है, बाकमाल है। तो जनाब बाकमाल की बात आई है तो मैं अपने तमाम सुनने वालों को जो हमारे साथ हैं, जिनकी समातों से हमारी आवाज़ टकरा रही है, तो मैं कहती चलूं कि आप बाकमाल हैं। पता है, जानती हूँ पता है, लेकिन मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ ताकि कुछ बात आपके जहन में बस अटक जाए और आप वो सब करना शुरू कर दो। आप बाकमाल हो क्योंकि आपका दिमाग बहुत ठंडा है। गुस्सा तो आपके पास भी नहीं भटकता, अगर आता है तो आप कंट्रोल कर लेते हो। उसके अलावा आपकी जुबान बेहद मीठी है, इतनी मीठी कि ये किसी का दिल नहीं दुखाती। और पता है ये जो दिल है ना, बहुत नर्म है, ये दिल किसी का दिल नहीं दुखाता। तो आप हुए बाकमाल। तो जनाब हम अपने प्रोग्राम में तैयारी गल्फ में गलती भी सुनते हैं और साथ साथ हम आपसे कुछ बातें भी करते जाते हैं। तो आज जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, लाइक हम बात कर रहे थे एहसास की, हम बात कर रहे थे खुशी की, हम बात कर रहे थे कामयाबी की। अब एहसास, एक बात मैं अक्सर कहती हूँ, इश्फाक अहमद साहब ने कहा था कि हमें फातिहा लोगों के मरने पे नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि हमें तो फातिहा एहसासात के मर जाने पे पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान मर जाता है तो उसका जो किरदार होता है वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब एहसासात मरते हैं तब इंसानियत ख़त्म हो जाती है, तब आपके पास कुछ नहीं रहता। अगर एक इंसान को तकलीफ़ है, वो सड़क पे पड़ा बिलबिला रहा है, वो दर्द से कराह रहा है, वो चीख रहा है कि मेरी मदद करो, आसपास से लोग गुजर रहे हैं, उन्हें कोई एहसास ही नहीं है, अरे वो कहते हैं कि हम क्यों करें, हम नहीं देखते, तो क्या कहेंगे आप इसको? ये एहसास ही तो है, ये एहसास की तो दौलत है, ये एहसास ही तो है कि हमें खुशी होती है। अगर हम बिल्कुल बेहस हो जाएं तो हमें खुशी का एहसास कैसे हो? अच्छा, जब हमें कामयाबी मिलती है तो हम खुश होते हैं, और खुश कैसे होते हैं? खुश भी तो एहसास होने से आता है ना। चले, कहते हैं कि कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ मेहनत तो भाई उसके लिए ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन पता है क्या, मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप कामयाबी चाहते हो तो कामयाबी के बारे में सोचने लग पड़ो, एक कामयाब इंसान की तरह सोचो और सोचो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं गिरा, अगर मैं मुझे ठोकर लग गई, मुझे कोई संभालने वाला ना आया, तो अपना हौसला मैं खुद हूँ, अपनी ताकत मैं खुद हूँ, अपनी कामयाबी मैं खुद हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर औकात लोग तब नहीं आते जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, लोग तब आते हैं जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। यानी आप गिरोगे तो कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन जब संभल जाओगे ना, जब वो चीज़ कर लोगे, जब वो चीज़ पा लोगे, तो बहुत सारे हाथ आ जाएंगे, बहुत सारे सहारे आ जाएंगे। वो ये पूछेंगे कि हाँ तुमने कर लिया, अरे वाह तुमने तो कर लिया, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने कैसे किया, इस दौरान तुमने कितनी तकलीफें सही। तो इसलिए कामयाब होए, खुश रहें। और पता है हकीकी खुशी क्या होती है? हकीकी खुशी तब मिलती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश हो, जब आप दूसरों को खुश करो, जब आपकी वजह से आपके माँ बाप के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, जब आपकी वजह से कोई अनजाना हंस पड़े। खुशी के लिए कोशिश करनी पड़ती है या नहीं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कहते हैं कि नूरजहाँ की खूबसूरत सी आवाज़ सुन लेते हैं।

कदमों में तेरे जीना मरना, नूरजहाँ की खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक आप सुन रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आया होगा। फिल जनाब, आज भी ऐसा हुआ कि वक्त तेजी से गुजरता गया और हम उसको कैद नहीं कर पाए। अरे ये कैद हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम इससे कुछ लम्हों को संभालने की कोशिश जरूर करते हैं। तो जाते जाते हम आपसे ये कहेंगे कि हमेशा खुश रहें, खुश रहें। और एक बात जो मैं कहती जाऊं कि कामयाबी जब मिलती है तो तब खुशी जरूर होती है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि खुशी में ही आपने कामयाबी ढूंढ ली हो? अजीब बात कर दी मैंने, तो बताई जाती हूँ। जरा सोचिए कि किसी के लबों पे आपने मुस्कुराहट फैला दी, किसी को रोते रोते हंसा दिया, तो कामयाबी हुई ना। इसी तरह कामयाबियां समेटते रहे, अपने से दूसरों को बेहद खुश रखिए, खुशियां बांटते रहे, क्योंकि जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, जब मैं खुश होती हूँ, जब आप हम सभी खुश होते हैं। लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। और एक बात और, अपने लम्हों पे चंद लम्हों की मुस्कुराहट लाने के लिए किसी की मुस्कुराहट मत छीनिए, चाहे वो बहुत छोटी सी कीमत अदा करनी पड़े आपको उसको मुस्कुराहट की। उस मुस्कुराहट की छोटी सी भी कीमत आप अदा करनी पड़ जाए आपको, तब भी वो मत छीनिए किसी से, किसी की खुशी मत छीनिए, और खुशियाँ बांटते रहे। खुश रहें, खुश रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। त्यारे गज़ल को सुनते रहेगा। आप सुन रहे थे त्यारे गज़ल, मेज़बान सुमेर सगीर के साथ। अल्लाह हाफिज़।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आँखों के मसाइल से दोचार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आँखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आँखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आँखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आँखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन गजा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.